0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
6: जन जन तक पहुंचा संदेश।
7: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सुप्रभात, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड? मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुन के बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ हैं आप और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे FM मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
2: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
3: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो

0: तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
1: बिल्कुल एग्जैक्टली।
0: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
0: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
0: टाइम तो होना ही चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें, उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
1: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
0: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
1: ठीक है,
0: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है, हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करूं अपनी वुमेन्स की, अपनी उन घर की महिलाओं की जो सुबह कामकाज में लग जाती हैं, उठते ही अपने लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पाती हैं और पूरा दिन बहुत बिजी रहती हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करोगी? अगर वो उठ रही हैं तो कैसे दिन की शुरुआत एक हेल्दी करें?
0: हाँ, अब जैसे उनका स्कूल बच्चों को भेजने का शेड्यूल होता है
1: जी,
0: तो वो सुबह के टाइम तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड्स को भेजने की ऑफिस भेजने की ड्यूटी हो जाती है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो 15 मिनट्स प्राणायाम करें सुबह मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर पीकर, तो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। उसके बाद वो 40 मिनट्स का अपना वर्कआउट जरूर करें, जैसे फैमिली से फ्री हो गए थोड़ा सा और अपना ऑफिस हस्बैंड चले गए, तो आपका 10 बजे के बाद आपका टाइम फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। आपको 40 मिनट जरूर निकालने ही चाहिए अपनी एक्सरसाइज के लिए।
1: क्या बात है, तो लेडीज अब जो है आपको गाने सुनने के साथ साथ खुद को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। बाकी मोर डिटेल्स के लिए आपको रुचि मैम को फॉलो भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, क्योंकि हर चीज, हाँ ये चीज मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि ना हमारी एक हैबिट बन गई रुचि मैम कि हम हर चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं, हमें लगता है यूट्यूब पे इसका कंटेंट होगा, गूगल पे हमें ये मिल जाएगा, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मिल तो जाता है, बट जो सही डायरेक्शन है, सही फॉर्मेट है, वो नहीं मिल पाता है।
0: सही,
1: एब्सोल्युटली, जब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, हमें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम तो कुछ भी करेंगे और उसके नेगेटिव असर भी होते हैं शायद।
0: सही बात है, अगर आप अंडर गाइडेंस कोई एक्सरसाइज करोगे तो भाई आपको एक देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला है, तो आप अच्छे से कर पाओगे।
1: राइट।
0: इन केस आपने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली देखकर, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
1: 100% बिल्कुल। तो इसीलिए
0: आप देखिए, किसी की बैक एक है और उसने कुछ गलत एक्सरसाइज कर ली, तो उसकी बैक एक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है।
1: अच्छा मैम, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। योगा के बारे में हम ढेर सारी बातचीत कर रहे हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसपे हम शायद जितनी बातें करें वो कम होंगी, करेक्ट, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, योगा जब हम करते हैं तो इससे कौन कौन सी चीजें जो हमें लगता है कि रिलीव हो सकता है, उसमें हमें आराम मिल सकता है, कुछ चीजें हमारी छूमंतर भी हो सकती हैं?
0: देखिए, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस हो या हमें बॉडी के बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी लेडीज की क्या आदत होती है, जरा सा हमें बैक पेन हुआ या शोल्डर पेन हुआ या नेक पेन हुआ तो फटाफट पेन किलर लिया
1: और बस हमारा
0: हो गया, नेक्स्ट डे उनको वही प्रॉब्लम दोबारा
1: रिपीट होने लगती है। बिल्कुल।
0: अब मेरे यहाँ जितने भी योगा स्टूडियो में लोग आते हैं, कोई भी अब एंटीबायोटिक नहीं लेता, सब लोग पेन फ्री हो गए हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ मेरा जोर रहता है और मैं सभी को इस चीज के लिए मोटिवेट भी करती हूँ, क्योंकि अब किसी को सियाटिका पेन और बैक पेन वगैरह सब सबके रिमूव हो गए हैं।
1: दैट्स वेरी नाइस, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेडिसिन ले लेके परेशान हो रहे हैं और अंदर जाके वो प्रॉब्लम भी कर रही हैं।
0: और फ्रोजन शोल्डर और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिका, स्लिप डिस्क, ये प्रॉब्लम्स तो मैंने सभी लोगों की हील कर दी है।
1: वाह लवली मैम, बहुत ही बढ़िया, ऐसे लोगों के लिए सल्यूट जाता है, प्लीज मैम।
0: बाकी जैसे हम लोग, मैंने थायराइड के भी 2-3 पेशेंट्स को ठीक किया है।
1: वाह,
0: तो उनका थायराइड बहुत ज्यादा था, तो अब उनका जब वो नॉर्मल, मैं उनसे कहती रहती हूँ, उन्होंने मेडिसिन नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी जब वो मेरे पास आए थे।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो मैंने उन्हें मेडिसिन छोड़ने के लिए नहीं बोला था, साथ में उनकी मेडिसिन भी चल रही थी, मैंने उनको डाइट गाइडेंस दी, मैं सबको पर्सनलाइज्ड डाइट गाइडेंस देती हूँ, तो हाँ, तो डाइट गाइडेंस दी, फिर उसके बाद मैंने उनको योगा कराया, तो उससे उनका हील हो गया। काफी चीजें हम हीलिंग भी साथ में कराते हैं, काफी चीजें, खाली एक योगा ही नहीं, काफी चीजें कराते हैं, तो उससे वो लोग हील हो जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं।
1: भाई मैं तो मैम की बातों में खो गया हूँ भाई, मुझे लग रहा है मुझे कोई जगाओ, मेरे को उठाओ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी प्यार से एक्सप्लेन कर रही है ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है, मेरे को तो देखने में और उनकी बातें सुनने में उतना ही मजा आ रहा है। एक तो नाम आनंद, ऊपर से बातें आनंदित वाली हो रही है, और जब बात हेल्थ की होती है तो डबल आनंद आता है, क्योंकि हमें, हम कुछ भी करें बट अपनी हेल्थ के लिए ना हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए, जब भी आपको टाइम मिले। अच्छा मैम, टाइम से मुझे याद आया एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना रैंडम आते हैं, सॉरी, वो ऑन द स्पॉट चलता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं पूछ रहा था, क्या योगा करने का सिर्फ मॉर्निंग ही है या फिर हम शाम को भी कर सकते?
0: नहीं, हम इवनिंग में भी कर सकते हैं।
1: ओके,
0: हाँ, उसके पहले सिर्फ हमें 2.5 आवर का थोड़ा सा बीच में फूड अवॉइड करके 2.5 आवर का ब्रेक लेना होगा।
1: ब्रेक लेना होगा, उसके बाद हम
0: कंटिन्यू, उसके बाद हम कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, मतलब फिर कोई इशू नहीं है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: परफेक्ट।
0: इवनिंग बैचेस भी चलते हैं, तो सब लोग 2.5 आवर पहले ही लंच कर लेते हैं, उसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं।
1: That's very nice. अब चलिए
0: ऑफलाइन दोनों ही सेशन,
1: अब चलिए मैम की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, वो कैसे अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रही है मुरादाबाद की लेडीज को, और क्या कुछ स्पेशल होता है उनके इस सेशन के अंदर, कितने क्लासेस वो देते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो जो प्रोवाइड कराती हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाह रही है, चाह सिर्फ मेल का है या फीमेल का ये भी हम जानेंगे, डोंट वरी, आप बने रहो और सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। योगा एक्सपर्ट रुचि मदान जी मेरे साथ हैं, मेरा नाम आनंद है, और आपको आनंदित करने के लिए, आपकी हेल्थ पर और ढेर सारी बातचीत करने के लिए अपने साथ लेकर आए हूँ एक फैंटास्टिक मैम को, जिनका नाम रुचि मदान है। सो ग्लैड यार, क्योंकि उनसे मैं बात करता रहता हूँ, उनका मैं जब भी स्टेटस देखता हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन आता है, बट हाँ वो बात अलग है, मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूँ, बट अब नहीं भूलूंगा, क्योंकि अब मैम मेरे को मंत्र सिखा के जाने वाले हैं यहाँ पे लाइव। अच्छा मैम, ओम चेंडिंग की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले वंस अगेन वेलकम बैक, और ओम चेंडिंग की अगर बात करें तो ओम चेंडिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं?
0: देखिए, ओम चैंटिंग में रोज अपने स्टूडियो जब हमारे साथ हाँ, योग कराते
1: हाँ,
0: हैं
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: तो हर बैच में ओम चैंटिंग अलग से होता है, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल ओमकार मंत्र है, जो मतलब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से ही रिलेटेड है।
1: ओके,
0: तो ओम का जाप करने से हमारी 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती
1: है। एक बार रिपीट कर देंगे, मैं भूल जाऊंगा, दोबारा बता दो आप।
0: 72,72,210 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं ओम का उच्चारण।
1: अरे वाह, कितनी देर तक कर सकते हैं ओम चैंटिंग?
0: ओम चैंटिंग आप जैसे हम लोग तो 3 टाइम्स कराते हैं, 3, 5, 7 इस तरीके से,
1: मतलब ऑड अलग अलग कैटेगरी
0: ऑड फिगर्स में ओम चैंटिंग कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, ठीक है। तो
0: इसको करने का भी तरीका होता है जो हम मतलब मेथड से कराते हैं। ओम चैंटिंग से हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेशन हो जाती है,
1: ठीक है।
0: तो अभी क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कराते हैं। Okay. और इससे ओम चैंटिंग से रिलेटेड हम लोग अपना प्रज्ञा योग भी कराते हैं। तो प्रज्ञा योग इतना पावरफुल है जो कि ओम से ही कनेक्टेड है।
1: ऑल राइट,
0: तो प्रज्ञा योग में हम क्या करते हैं, उससे हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है वो, और हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है उससे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल पावर इम्प्रूव होती है प्रज्ञा योग से, जो कि हमारे एटमोसफेयर में ऊपर जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे हमेशा, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमेशा ओम की वाइब्रेशंस होती रहती है। तो उसकी वाइब्रेशंस को प्रज्ञा योग में हम अपने भीतर लेते हैं।
1: ओके,
0: तो उसके करने के बाद जब भी वो सब लोग करते हैं, उसके बाद सब लोग, एक तो उससे बॉडी की टोनिंग तो होती ही है जो प्रज्ञा योग हम करते हैं, और उसके साथ हमारी मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और सब लोग इतने हैप्पी हो जाते हैं उसको करने के बाद, बहुत सब लोग रिलैक्स और काम फील करते हैं।
1: दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे लग रहा है रुचि मैम से एक बार ओम चेंडिंग करा ले क्या? क्या हम अभी लाइव चेंडिंग कर सकते हैं ओम की? पॉसिबिलिटी है,
0: कर सकते हैं।
1: ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आंखें खोल लूंगा। वेल, आंखें मीच के हम चेंटिंग करते हैं, आंखें खोलिए पहले, ये बताओ।
0: देखिए, जब हम प्रेयर करते हैं स्टार्टिंग में,
1: ठीक है,
0: हमारा सेशन प्रेयर से स्टार्ट होता है।
1: हाँ जी,
0: तो हम जब प्रेयर करते हैं तो हम आईज क्लोज ही रखते हैं।
1: ठीक है,
0: आईज नहीं खोल।
1: कुछ लोग कहते हैं जब हम आईज क्लोज करते हैं या जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो बड़ी नेगेटिविटी मन में आने लगती है, हमारा मन बहुत भटकता है।
0: एक्चुअली जिनको थोड़ा सा मेंटली जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको थोड़ा डिप्रेशन का इश्यू होता है, तो वो लोग आईज क्लोज करके नहीं कर पाते। तो उनको मैं अलाउ कर देती हूँ कि आप आईज खोल के ही कर लो, क्योंकि उनको हेडेक या ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है।
1: राइट।
0: लेकिन एक मेरे पास डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, तो उनकी वो अब काफी इम्प्रूव्ड हैं और उनको अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
1: अरे वाह, ब्यूटीफुल। तो हम भी ट्राई करके देखें मैम, एक छोटा सा, कितनी देर तक करना होगा?
0: आज तो हम शॉर्ट करेंगे ना।
1: ठीक है, तो ठीक है, रुचि मैम मुझे सिखाने वाली है ओम चैंटिंग। आई एक्सक्लूसिवली लाइव रेडियो पे पहली बार आप ओम चैंटिंग सुनोगे, अनबिलीवेबल यार, मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही। कैसे करेंगे हम, कैसे शुरू करना है आप बताइए। दोस्तों आप भी हमारे साथ ट्राई करिएगा, जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ट्राई करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा। तो मैम शुरू करें? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, आंखें बंद कर दीजिए।
0: पहले हम लोग, आज तो हम लोग चेयर पर बैठे हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते।
1: अच्छा, अलाउ है ये भी?
0: हाँ जी, हाँ,
1: ओके, ठीक है,
0: चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो अपने पृथ्वी तत्व से जुड़े और जमीन पर बैठ कर ही करें।
1: ठीक है, ठीक है।
0: तो सबसे पहले हम अपनी कमर, गर्दन और कंधे सीधे करके बैठ जाते हैं,
1: ठीक है,
0: स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं,
1: ओके,
0: अपनी आईज को क्लोज करते हैं,
1: ठीक है,
0: और सबसे पहले हम 5 ब्रेथ्स लेते हैं,
1: ओके,
0: अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जान्वित करने के लिए 5 ब्रेथ्स लेते हैं, लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल,
1: ओके,
0: लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा

0: और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट किरीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
9: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग है जी। एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये वो रेडियो स्टेशन है जहां आप और हम जुड़ते हैं दिल दिल तक, आपके शहर का अपना एकदम देसी रेडियो। श्रोताओं, इस वक्त अगर स्टूडियो की घड़ी के वक्त के मुताबिक बात करें तो वक्त हो गया है 8:18, और इस वक्त भाई साहब मौसम तो बहुत ही औसम है। आज सुबह से ही धूरे, मतलब जो है एकदम कड़क वाली धूप, सूर्य देवता जो एकदम कड़ाके के साथ निकल चुके हैं, तो मतलब आज गर्मी का जो आलम है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहने वाला है। क्या कहता है आज का मौसम ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज 6 जून की तारीख हो गई है श्रोताओं। अपने आप में बहुत ही स्पेशल तारीख है, और क्यों स्पेशल कहा ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज हम जिक्र कर लेते हैं आज के थॉट ऑफ द डे का। तो आज का विचार कहता है, कंट्रोल योर माइंड टू चेंज योर लाइफ। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, जब आप उसको समझने लगते हैं, आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आप अपने माइंड को कितना और कैसे वश में कर सकते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो यही कहता है भैया कि कंट्रोल योर माइंड टू चेंज योर लाइफ, है ना। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द है। श्रोताओं, ऐसी मोर डिटेल्स के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना है, आपने आरजे आनंद को ट्यून इन रखना है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। शनिवार की सुबह बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। आप ऐसे ही हमारे साथ प्यारी प्यारी मॉर्निंग को अपनी सुपर डुपर कूल बना सकते हैं, ढेर सारी मैसेजेस, प्यारी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया सा सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है ये बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की सुबह ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। उसके लिए क्या करना है, बस आपने आरजे आनंद का साथ देना है। और हाँ, एक चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, वो है बिलीव इन योर सेल्फ। जब आप खुद में बिलीव करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, या जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, और उसकी ख्वाहिश कर चाहते हैं कि ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए, उसकी तमन्ना रखते हैं, वो ज़रूर पूरी हो सकती है। बस अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक खूबसूरत गीत सुनेंगे, उसके बाद कुछ और प्रोग्राम्स होंगे इसी प्रोग्राम के अंदर, और हमारी आपकी बातचीत, हमारा आपका जो ये बात करने का सिलसिला है वो तो लगातार ऐसे ही जारी रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और आज की सुबह अगर आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो बेशक आप हमें संदेश पहुंचा सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। ये वो स्टूडियो का नंबर है जिसके ज़रिए आप मेरे साथ मुखातिब हो सकते हैं। आज शनिवार का दिन है, बहुत ही खूबसूरत तारीख मैंने आपको बताई है। आज वेदर क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी जरा सी देर में। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वंस अगेन आई रिपीट माई नंबर 9837896896। श्रोताओं, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आपको बता दें इस वक्त आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। एब्सोल्युटली दिस इज मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एक अमेजिंग गाना, इसके बाद वी कम बैक।

0: भाई साहब ये बात तो इस गाने में एकदम सच कही है कि हर किसी के दिल में एक लड़का हो या लड़की उसका तो ख्याल रहता ही रहता है। हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद के साथ हैं, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। जी हाँ दोस्तों, और इस वक्त हमारे साथ ढेर सारे श्रोता साथी जुड़ चुके हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक श्रोताओं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और ढेर सारी अपने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचाते हैं। आप लोग प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। हमारे पास मैसेज आया है प्रियंका जी का, लिखती हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग सुबह। एक चीज़ तो कहना चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिसनर से कहना चाहती हूँ कि अच्छा सोचिए, आप डेफिनेटली जीवन में अच्छे ही लाइफ में आपको अच्छे मुकाम हासिल होंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने घुमा फिरा के जो ट्रैक पे लेकर आए हो ना, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक मैसेज और आया है। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आई एम गुड। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है प्रियंका जी का, और साथ में एक मैसेज और पहुंच गया है तरुण जी का। ये लिखते हैं आनंद जी, आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं, आज बहुत ही स्पेशल है दिन और वीकेंड आते ही छुट्टी वाली वाइब आ जाती है। आई एग्री विद यू 100% सही कहा आपने यार, बट मैं तो ऑफिस पहुंच गया हूँ ना बाबा। एक संदेश और मेरे पास पहुंचा है, हेलो गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूं जी। ये मैसेज हमारे पास किसने पहुंचाया, चलिए इनका नाम चेक करते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, तीन बार आपने हेलो लिखा है। ये मुझे मैसेज कर रही हैं शिखा जी, एक बार फिर से जुड़ गई है हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए श्रोताओं, अभी आपको एक बेहतरीन प्रोग्राम की ओर लेकर चलेंगे, जिसमें आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की सुबह इसी प्रोग्राम के जरिए। और थोड़ी देर में मैं लौट कर आऊँगा तो आपको बताऊँगा आज के दिन का कोटा क्या कहता है, आई मीन टू से कि आज का जो दिन है वो क्यों खास है। हर दिन की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों स्पेशल है, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। दिल से कहिए भैया, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, है ना। और ऐसे ही अपना जो प्यार है वो हमारे साथ बरकरार रखिए। और ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मैसेज करने के लिए, हम आपके दिल से आभारी हैं। और भी हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़ रहे हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आपका प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। एक मैसेज और पहुंच गया है, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, आपको सुबह सुबह रेडियो पर सुन के बहुत ही आनंद आ रहा है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। चलो गाइस, आप जहां भी जा रहे हैं, अगर आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे, तो आरजे आनंद की तरफ से ऑल द वे बेस्ट। एक छोटा सा बहुत ही इमीडिएटली छोटू सा प्रोग्राम है, इसको सुन के इमीडिएटली लौटते हैं। और मेरठ के बारे में इसमें जो है जिक्र हो रहा है, तो मेरठ की नान खटाई आपने खाई है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ये सुनेंगे तो आप मेरठ जरूर पहुंच जाएंगे आज की सुबह मेरे साथ।
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं। जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मीरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से
1: नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात तो स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला, इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत मेरठ विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना,
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ।

0: इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारी को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंस सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
1: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नान कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांग टाइप से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज़ से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज़ मिल गई, तो उससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा।
1: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
0: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
3: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
2: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है,
3: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
2: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
3: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
2: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
3: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7066002430।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या सॉन्ग था यार, व्हाट अ सॉन्ग, मजा आ गया ना। चलो जी, इसी गाने के बाद वेलकम बैक हियर वंस अगेन। एक बहुत ही बेहतरीन गाना भी आपने एंजॉय कर लिया, आनंद के साथ हैं आप। 8:57 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है सैटरडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। बातें वही होती है जो आपका दिल चाहता है। हां जी, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आज का

0: आज के दिन एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर का, ये आई एम टॉकिंग अबाउट सुनील दत्त, आज इनका जन्म हुआ था। हिंदी फिल्मों के अभिनेता है। आज के दिन यानी कि सन 1930 में इनका जन्म हुआ। श्रोताओं, और आपको बता दें भारत के प्रसिद्ध एथलीट 1939 में जन्मे गुरवचन सिंह रंधावा, इनका भी जन्म हुआ श्रोताओं आज ही के दिन। और रमा नायडू, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, 1936 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन श्रोताओं। तो आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों की बात मैं कर रहा हूँ जिनका जन्म हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज का ये दिन अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती है। श्रोताओं, बात करें अगर आज ही के दिन जन्मे एक और एक ऐसे नाम की जिसके बारे में जिक्र करना तो बनता है, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जी का जन्म आज के दिन हुआ था सन 1955 को, वेद प्रकाश शर्मा जी की बात कर रहे हैं हम श्रोताओं। और वहीं राजेंद्र कृष्ण हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं, सन 1919 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन श्रोताओं। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। बाकी आज का दिन और क्यों खास है, क्या स्पेशल है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से मनाए जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ हैपनिंग चीज शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं 9837896896, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर के जरिए आप अपने दिल के हालचाल हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, और हमारी जो कम्युनिटी है, मुरादाबाद की जो जनता है, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं दिल से दिल तक, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और बिल्कुल ये जो सफर है वो पिछले 3 सालों से आपके साथ बरकरार है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। श्रोताओं, ढेर सारे मैसेज तो आपके पहुंच ही रहे हैं, और इसके साथ ही साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। आज का दिन अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, और आने वाली 20 जून को क्या स्पेशल हो रहा है मुरादाबाद में, इस पर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ कल मुरादाबाद के अंदर क्या बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। बाकी ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, एक और मैसेज आ गया है मेरे पास, हाई गुड मॉर्निंग दिस इज मी, क्या लिखा है इन्होंने, आर्यन, हाई आर्यन गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, ढेर सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं, फटाफट अभी शामिल करेंगे इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप जुड़े रहिए आनंद के साथ।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: था मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय,
6: बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: बिल्कुल जी, 7 से 10 मेरा और आपका ये जो बातों का सिलसिला है वो होता है, लेकिन आजकल थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि थोड़ी सी तब्दीली हो गई है प्रोग्राम से, लेकिन कोई बात नहीं जी, अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सुपर उपर वाला गुड मॉर्निंग है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM। देखिए अगर आप रोज ऑनलाइन मंगा रहे हैं अंडे तो भैया जरा सावधान हो जाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर अभी डेफिनेटली मैं एक बात बताने वाला हूँ। और अगर आपकी थकान आपको बार बार परेशान कर रही है तो क्या आपको पता है कि आपकी थकान में छुपी है मल्टीविटामिन की कमी, इसके ऊपर अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज मॉर्निंग मैगजीन शो है तो यहाँ पर हेल्थ की बातें भी होनी बहुत जरूरी है, आपकी काम की बातें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद। और हम वही वाली बातें करते हैं जो भैया आप चाहते हैं कि यार ये वाली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये वाली बात होनी चाहिए, ये वाला टॉपिक होना चाहिए आनंद। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन भी है आपके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप आज की सुबह हमारे साथ, आपको एक जाएगा बिग शाउट आउट यार, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे हमारे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन की कड़ी में।

और बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो 9 बजे वाला आ रहा है, दिस इज माई लास्ट आर, इसी में हम ढेर सारे गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएंगे और धीरे धीरे करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पर आपको वो सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिलती। देखिए दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का जो वेदर है ना, वो हमें सिखा रहा है, वो हमें बता रहा है कि भैया आप जो है आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ निकलिए, अपने छाते छाते लेके निकलिए, मतलब बारिश होना हो लेकिन आज की धूप जो है ना वो बहुत कड़क वाली धूप है, तो उस कड़क धूप में जरा अपना साथ जो है छाते के साथ भी बरकरार रखिए। मेरा क्वेश्चन आज आपसे होने वाला है, विच स्टेट इज नोन एज द कॉफी स्टेट ऑफ इंडिया। मेरे को आप बताओ जी, भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है? ठीक है, आपने मेरे को व्हाट्सएप करना है, आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी चेक करते हैं कि भारत का जो कॉफी राज्य है वो किसे कहा जाता है। आपको चार ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी गोवा। इन चारों में से कोई है करेक्ट आंसर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ अपना बढ़िया सा जवाब। आज का सवाल, भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है? कितने लोगों को पता है इसके बारे में जरा बताओ, बिना गूगल के दिमाग लगाओ और मेरे को मैसेज करके बताओ। देखो मेरा मकसद ये होता है कि आपके दिमाग के जो घोड़े हैं ना वो भी टक टक करके दौड़ते रहें ताकि आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे। श्रोताओं चलिए अभी लौट के आते हैं तो कुछ खास बातें बताएंगे आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अमेजिंग और ब्यूटीफुल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर, जहां पर भैया हम आपसे सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि देखो अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया तो आप हमारी क्लास में बहुत पीछे बैठे हो। आप चाह रहे हो ना मेरी क्लास में आप आगे आ जाओ, अपनी अटेंडेंस लगवाओ यार। अटेंडेंस मुझे याद है अपनी क्लास में सबसे ज्यादा ना मैंने टीपा है भाई, बता रहा हूँ मैं बहुत टीपता था। अब ये टीपना क्या होता है आप में से कईयों को पता होगा यार, आपने टीपा है यानी कि सच बताओ दोस्तों, ये कॉपी में टीपा है? अच्छा बहुत इंटेलिजेंट थे यार, मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं था यार, सच बता रहा हूँ, मैंने तो बहुत मैं टीपू सुल्तान बन गया था यार। चलो आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं, गुड मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया गाना। और ऐसे बढ़िया गाने सुन के तो भैया फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वो गाने हैं जो आजकल तो सोशल मीडिया पे ना तुरंत से रॉक मचा देते हैं। वेलकम बैक, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम दिस इज बिंदास मॉर्निंग। ये है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:11 हो गए सैटरडे की सुबह। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भैया अगर आप रोज ऑनलाइन मंगवा रहे हैं अंडे तो हो जाए जरा सावधान। यस भैया, आपको बता दें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जहाँ एक तरफ उपभोक्ताओं को घर बैठे आसानी से सामान्य जो है चीज़ें मतलब बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सामान उपलब्ध कराया है, वहीं इसकी वजह से सामान की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े अंडों की क्वालिटी को लेकर जवाब मांगा है। एंड ऐसे में ये जानना बेहद ही ज़रूरी हो गया है कि अंडे को स्टोर कैसे किया जाता है और उन्हें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऑनलाइन ये चीजें मंगा रहे हैं तो भैया जरा चीजों को आपने जो है सही से अच्छे से चेक करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर कोई अपनी हेल्थ के लिए स्पेशली कोई खाने पीने की चीज मंगा रहे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, उस पे जो है आपने हर चीज पे ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना है। आप में से हमें से बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो करते हैं यार आज नहीं कल करेंगे यार, अरे आज काम नहीं करना कल करेंगे। पाजी क्या आप भी अपने काम को कल पर टालते हैं? भैया हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे लेकिन वो कल अक्सर कभी आता ही नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए भी हम अपने काम को टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है यार आज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कल फ्री होकर अच्छे से इस काम को करूँगा। और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आप इसको छुड़ा भी नहीं पाते हैं, है ना। और ये आदत आपको उस तरफ ले जाती है जहाँ आप सोच भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप भी हर दिन सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा तो बस एक छोटा सा तरीका अपनाइए, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और सबसे आसान काम से जो है शुरुआत कीजिए। याद रखिए छोटी शुरुआत ही एक बड़ी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी काम की लिस्ट है तो उस काम में सबसे ईजी आपके लिए क्या है, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपके लिए बहुत ईजी है, पहले उसको शॉर्टलिस्ट कीजिए, उसको निपटाइए। और जब वो काम आपका कंप्लीट हो जाए तो खुद को एक बिग शाउट आउट दीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए और ऐसे करके देखिए खुद को कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था भैया देखिए कि आपकी थकान में छुपी है मल्टीविटामिन की कमी, बिकॉज सेल्फ केयर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको पता है ना यार लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया और आजकल की आम समस्या तेजी से देखने को भी मिल रही है कि लोग बिना ज़्यादा काम किए ही थकने लगे हैं। एक्चुअली बहुत कमज़ोरी उनको महसूस होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, बहुत आलस और बॉडी में वीकनेस जैसी फीलिंग होती है। सुबह उठते ही शरीर भारी लगने लगता है, दिन भर सुस्त रहता है, ऐसा लगता है भैया कि अब काम में मन ही लेने लग रहा है, है ना। और ज़िंदगी भाई साहब वो वाला जैसे कहते हैं ना रिजल्ट नहीं दे रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ों को अपनाना है। और भैया विटामिन्स क्यों ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दें शरीर सही तरीके से काम करने के लिए कई प्रकार की शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स पर वो निर्भर होता है, जैसे विटामिन B12, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि जो है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी को मेनटेन रखते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, आपको बूस्टर देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। और जब इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है पूरी तो शरीर आपको पूरी पॉजिटिविटी और पूरी ऊर्जा के साथ जो है वो काम में लग जाता है और आप थकते भी नहीं हैं जल्दी, आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है। तो अपने डाइट में आप विटामिन सी को ज़रूर शामिल करें, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B12 को भी ज़रूर लें। और मुझे लगता है कि आजकल ये जो जल्दी थकान की कमी ना, इसका एक कारण ये भी है कि आजकल जो है जीवन शैली में लोग संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या फिर ऐसे जो पैकेट बंस फूड मार्केट में मिलते हैं उनका सेवन हम ज़्यादा करते हैं। धूप में हम बहुत कम बैठना चाहते हैं, हालांकि आजकल तो वो वाली धूप नहीं मिल रही है आपको, लेकिन सुबह सवेरे अगर आप जब सूर्य देवता उगते हैं, जिस टाइम सूरज उदय होता है, अगर आप वो वाली धूप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। देखिए भैया अब आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो आपने जो है अपने आहार में हरी सब्जियों को शामिल करना है, फल, दालें, नट्स और बीज को शामिल करें। बाकी रोजाना थोड़ी देर आप सुबह की धूप में बैठे विटामिन डी लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, आपकी हेल्थ को चकाचक बनाने का ख्याल मैं रखता हूं। अभी बातें हो गई ढेर सारी, आज की सुबह मैंने आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर आप इसका जवाब दे दोगे। अगर आपने नहीं दिया है तो आपको देना चाहिए, नहीं तो आप हमारी क्लास में आज की सुबह बहुत पीछे बैठ जाओगे। हाँ जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ यार। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ भारत का
कॉफी राज्य किसे कहा जाता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं आज की सुबह, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गोवा। इन चारों में से कोई एक है राइट आंसर। अगर आपने दिया सही जवाब तो आज की सुबह आपको जाएगा एक बिग शाउट आउट। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन, सो डोंट फॉरगेट, आप मुझे फटाफट मैसेज करो। मैंने नंबर आपको बता दिया है, अभी लौट कर आते हैं। एक बहुत ही अच्छा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आ रहा हूँ, ठीक है? आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत ही बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, विशाल ददलानी की आवाज सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6। बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। श्रोताओं ढेर सारे मैसेज मुझ तक पहुंच गए हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां पर आपके साथ फुल ऑन वाइब फील हो रही है। सैटरडे की सुबह में आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं या आप किसी और काम के लिए जा रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे

आरजे आनंद की तरफ से। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी लौट कर आते हैं, कुछ और खास इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। लोकल फॉर वोकल में क्या चल रहा है ये भी आपको बताऊंगा। कल मुरादाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां बातें वही जो आपका दिल चाहे। वॉल्यूम बढ़ा के सुनो, अमेजिंग ट्रैक लाइन अप कर दिया था मैंने थोड़ी देर पहले ही आपके लिए, लेकिन अब इसको प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन गाना। चलो एंजॉय करते हैं साथ में, ये

0: दोनों नीड टू हियर दिस।
1: देखो यार, बात ऐसी है, गानों के साथ साथ जब ये काम की चीजें इसमें जो है सुनाई देने लगती है तो और मजा आ जाता है। और अभी ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने वाली है, थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको समझ में आएगी जरूर, आई एम श्योर। लेकिन उससे पहले जरा ये चीज

वेलकम बैक है जी, आप सुन रहे हैं सैटरडे की सुबह में आरजे आनंद को, और ये है आपके शहर का अपना अपना अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। चलो आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, लेकिन उससे पहले आप जरा मैं फटाफट से आपको बता दूं इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। यार सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे और आपके हम सभी के पास आजकल स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, और सभी के फोन में फेसबुक इंस्टाग्राम तो है ही यार। ये एक ऐसी ऐप है जिसके बिना तो फोन ही अधूरा अधूरा सा लगता है, राइट। चलो आपको बता देते हैं, यदि भैया आप फोटो वीडियो शेयर करने के लिए, रील्स देखने के लिए अगर आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर यह है भैया कि मेटा ने इंस्टाग्राम प्लस यानी इंस्टाग्राम प्लस नाम से एक नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान दुनिया भर में रोल आउट करने का जो है वो फैसला तो पहले ही ले लिया था, लेकिन अब शुरू भी कर दिया गया है। हाँ जी, और इस नए प्लान में यूजर्स को जो है एक्सक्लूसिवली फीचर एडवांस जो है बहुत सारे फीचर्स उनको मिलने वाले हैं, कस्टमाइजेशन टूल्स आपको मिलेंगे, और जो एकदम नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कुछ एडवांस फीचर होते हैं ना, वो आपको सब्सक्रिप्शन के बाद ही मिलते हैं। वैसे भी इंस्टाग्राम ने भी एक नया ये फीचर लॉन्च कर दिया है इंस्टाग्राम प्लस करके, एंड इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इंस्टाग्राम जो है आपको टू तरीके से मिलेगा, एक तो जो मैं और आप चला रहे हैं उसमें इतने खास फीचर्स तो है नहीं, जो है वो चलेंगे, बट जो सब्सक्रिप्शन देगा उसके लिए कुछ प्रीमियम और इंटरेस्टिंग करके प्लान्स उनके सामने आएंगे, और बहुत सारे एक्सक्लूसिव टूल्स उनको मिलेंगे जिससे वो अपने इंस्टाग्राम पे और भी चीज़ों को अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्लस में यूजर्स को ज्यादा फीचर्स और ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा, और हाल ही में कंपनी ने यह भी साफ किया कि मौजूदा इंस्टाग्राम पूरी तरह फ्री रहेगा, आम यूजर्स के लिए किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। इंस्टाग्राम प्लस पर उन लोगों को ध्यान में रखकर लाया गया है जो अपने सोशल मीडिया अनुभव को ज्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, उनके लिए है। तो अगर आप और मैं तो नॉर्मल इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें और आपको लोड नहीं लेना है पाजी, बट हाँ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम प्लस करेंगे लोड तो आपने देना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन मेरे भाई। मैंने कह रहा भैया ज्यादा टेंशन ना लेने के, ठीक है जी, बस आप मेरे साथ ऐसे बढ़िया तरीके से प्रोग्राम सुनते रहो। हाँ, बाकी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो मैं आपको देता रहूंगा। अभी मार्केट में बहुत अच्छी रसीली लीची आ गई है भैया, अगर आप वो खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा रहे हैं तो आपको खानी चाहिए। मैं क्यों कह रहा भाई ये भी बताऊंगा, और भैया हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि देखिए आज हमने आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भैया भारत में कॉफी का राज्य किसको कहा जाता है, ये आपने मेरे को मैसेज करके बताना है। ढेर सारे श्रोता साथी मंडने मैसेज कर रहे हैं, भैया जोरदार तालियां रे, मुझे क्या हो गया, मैं सही आवाज में क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा ट्रैक से भटक जाता हूँ कभी कभी। आगे बढ़ते हैं यार, वक्त हो गया है 9:30, ये है सैटरडे की सुबह, और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कल सुबह 6:30 कंपनी बाग में एक बहुत अच्छी मैराथन होने वाली है, एंड आई एम श्योर आप इस मैराथन में जरूर जाएंगे। साइकिलिंग मैराथन है, रिसेंटली हमने वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट किया है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी उपलक्ष्य में जो है ये हो रही है कल 7 जून को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैराथन, एंड आई एम श्योर अगर आप इसमें नहीं गए तो आपको जाना चाहिए, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत कुछ कड़क जानकारी आपको मिलेगी। कहाँ पर? एफएम मुरादाबाद पर। अभी इस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो आपको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ से, जो आपको डिलीवर कर रहे हैं सॉरी। तो भैया आपको बता दें फिट इंडिया एम्बेसडर इसमें जो है इंक्लूड है, साथ ही साथ स्मार्ट सिटी भी इसमें शामिल है, और देश बचाएं साइकिल चलाएं, वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेशन होने वाला है, एंड आइए साइकिल को अपनाइए स्वस्थ, और पर्यावरण को जो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए, अपने पर्यावरण को बचाइए। तो ये 7 जून 2026 कल संडे 6:30 की शुरुआत हो जाएगी मॉर्निंग में, तो भैया संडे ऑन साइकिलिंग वाला डे, तो आप जो है कल अगर साइकिल चला रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कल आप यहां पहुंच सकते हैं कंपनी बाग, यहां पर जाके जो है आपने साइकिलिंग के सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना है। कल होगा ये 7 जून को कंपनी बाग में इसकी शुरुआत होगी, और 10 किलोमीटर तक आपको साइकिलिंग करनी है, राष्ट्रीय गान के साथ इसका समापन होगा, जैनुल भी इसमें रहेंगे शामिल जो फिट इंडिया एम्बेसडर रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास साइकिल नहीं है, तो भैया आपको साइकिल भी प्रोवाइड कराई जाएगी एब्सोल्युटली, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मोर डिटेल्स के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इनसे नंबर बता रहा हूँ आपको 9997723915, इस नंबर के जरिए आप जो है जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। कल वर्ल्ड साइकिल सेलिब्रेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, 7 जून को संडे की सुबह 6:30 कंपनी बाग से इसकी शुरुआत होगी।
आपको बता दें इसका जो मतलब ये कहाँ से निकलेगा बाबा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इसके लिए और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनके नंबर पे डिटेल्स जो है ले सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर है 999-772-3915। आने वाली 20 जून को भी एक स्पेशल कैंपेन हो रहा है आपके लिए मुरादाबाद के अंदर, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और साथ में शहर के कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कैंपेन। जी हाँ, सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है FM मुरादाबाद इस जो है 20 जून को। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा लेडीज, यहाँ बहुत सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं, बहुत सारे क्विज आप जीत की जा सकती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर। इसी से जुड़ी हुई राइट हियर एक अमेजिंग गाना सुनी थी चौहान इन द हाउस, आप आनंद के साथ हैं। 20 जून बहुत ही स्पेशल चीज हो रही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप लेकर आ रहे हैं FM मुरादाबाद एंड साथ में हमारे दो ब्यूटीफुल इन्फ्लुएंसर मुरादाबाद डायरी निशी गर्ग हमारे साथ इस कैंपेन में साथ दे रहे हैं। अगर आप भी इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, मतलब शामिल होना चाहते हैं, कैसे आप इसमें शामिल हो सकते हैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन गाना निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, तो भैया आपने इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ना है मेरे साथ। क्या बात है जी, फिर से बोलो जरा। अच्छा मैंने सुना नहीं मैडम जी, क्या कह रहे हो आप? अच्छा चल जुटी, गुड मॉर्निंग गाइस।

0: रेडियो वाला आनंद को सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, 6 जून की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, सैटरडे है, वीकेंड है। आई नो दैट बहुत सारे लोग निकल चुके हैं अपनी अपनी मॉर्निंग डेस्टिनी पर, ऑल द वे बेस्ट। और आज मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अभी बताता हूँ उसका क्या है सही जवाब। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं भारत का कॉफी का, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है। मैंने आपको 4 ऑप्शन भी दिए थे, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी गोवा। इन 4 में से कोई करेक्ट आंसर है। अगर आपने दिया मुझे राइट आंसर तो आपका आज का जो बिग शाउट आउट है ना वो आपके नाम कर दूंगा मैं यहाँ से अपने रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, फटाक से आप मुझे बताओ भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है, आपको पता है ना। वेरी नाइस, अब फटाक से मुझे मैसेज करो, नो एक्सक्यूजेस, नो बहाना, जल्दी से मुझे मैसेज करो यार।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
7: टायर लो, सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
10: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
11: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
12: माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
11: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले। तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
13: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
14: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
0: यही तो वो स्टेशन है जहाँ पर बातें होती हैं दिल से दिल तक, और ये है बिंदास मॉर्निंग। मुरादाबाद की मॉर्निंग गुड नी बिंदास होती है आरजी आनंद के साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलो श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। और आपसे मैं ये कहना चाह रहा था कि आज 6 जून है, आज के दिन बहुत सारे स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। बिल्कुल वही बताने आपको आया हूँ।

0: बेहतरीन गाना। सच बताऊं तो ऐसे गाने सुन के हम एकदम पुराने वाले टाइम में चले जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन वेलकम मूवी का ये गाना था। अभी आपने एंजॉय किया आरजे आनंद के साथ। 9:43 हो गए स्टूडियो की घड़ी में और कैसे ये समय निकल जाता है सच बता रहा हूँ यार, पता ही नहीं चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज विश्व कीट दिवस से जुड़ी कुछ बातें आपको बताते हैं। ये दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है एंड इसका उद्देश्य है कीट नियंत्रण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ये स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का संदेश देता है। कीट कई बीमारियों के जो है वाहक होते हैं। बताया जाता है कि प्रभावी कीट नियंत्रण से स्वास्थ्य और संपत्ति की रक्षा होती है। श्रोताओं आज का ये दिन बहुत ही खास है तो विश्व कीट जो है जागरूकता दिवस आज मनाया जाता है। इसके अलावा आज जो है बहुत ही प्यारा सा दिन है, अपनी छत को अब ग्रीनरी से भरने वाला दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि अपनी छत पर भी आप प्लांटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं और अपनी छत को बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। विश्व हरित छत दिवस 6 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण और शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए जो शहर में लोग रहते हैं ताकि उनके आसपास ग्रीनरी का माहौल बना रहे, तो भैया पर्यावरण और शहरी हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इमारतों की छतों पर पौधे लगाने का जो वो महत्वपूर्ण दिन है उसको जागरूक करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है कि भैया अपनी छतों पर भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अपने आसपास तो आप प्लांट्स लगाते ही, अपनी छत पर भी आप मज़ेदार गार्डनिंग करके एक खूबसूरत सा माहौल बना सकते हैं अपनी छत के यानी अपनी टेरेस के ऊपर। तो भैया छत को बनाइए हरा भरा, पर्यावरण को दीजिए एक नया सवेरा। आइए इस विश्व हरित छत दिवस पर अपनी छतों को बागवानी से सजाने का एक संकल्प लें। देखिए जब आपके आसपास ग्रीनरी होगी तो आपका एनवायरमेंट अच्छा होगा। और हमने कल ही वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया है तो ये कुछ खास दिवस जो आज के दिन को बहुत स्पेशल बना रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, आप इस वक्त सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ। वर्ल्ड ग्रीन रूफ डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। आज का दिन 6 जून की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले घंटे हमने चर्चा करी आज का दिन क्यों खास है। अब आपको बताते हैं आने वाली 20 जून को हम एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सखी सुरक्षा प्री हेल्थ कैंप, और ये जो है होने वाला है रामगंगा बिहार थाईचिली के अंदर। अगर आप भी इसमें आना चाहते हैं, स्पेशली ये लेडीज के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो अगर आप इसमें आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने हमारे नंबर पे अपना नाम के साथ जो है अपने शहर का नाम लिख के भेजना है 9837896896। सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिर मुरादाबाद, साथ दे रहे हैं हमारे शहर के कुछ कमाल के इन्फ्लुएंसर इसी मुहिम में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए लेडीज एंड जेंटलमैन। बट ये कैंपेन जैसे कि इसका नाम भी बता रहा है कि ओनली फॉर वुमेन्स सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप। इसके अंदर बहुत सारे आपकी चेकअप्स भी होंगे, बहुत सारे आपको गेम्स भी खेलने को मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। चलिए श्रोताओं अभी एक कड़क सवाल लेकर आता हूँ और कुछ आपके लिए हेल्थ की खबरें भी लेकर आता हूँ, मतलब आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था ना आपसे कि भारत का कॉफी राज्य किसे कहा जाता है। ढेर सारे श्रोताओं ने मुझे मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी मच इतने अमेजिंग मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दे दिए हैं जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्यूटिफुल मैसेजेस हम तक पहुँचाने के लिए। मेरे पास मैसेज आया था, हेलो आनंद भाई, गुड मॉर्निंग प्रेम, सैनी पेपटपुरा से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रेम, आई एम गुड। रिहाना मेरे साथ जुड़ी थी आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। रेडियो वाला आनंद को विक्की सागर गुड मॉर्निंग दे रहे हैं आज की सुबह। एंड दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से, जोन रोजी पल विलीस हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जीवन में पूरा खेल विचारों का होता है, विचार अच्छे रखिए सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एब्सोल्युटली जॉन जी, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। उस्मान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस्मान टेलर ग्राम बीजना से, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया। इन्होंने लिखा है आनंद जी भारत का कॉफी राज्य जो है वो कर्नाटक है। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर। सबीना जी मेरे साथ जुड़ गई रहमत नगर गली नंबर 1 से, लिखती हैं अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी कोशिश के बावजूद उजाला ना ले सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरे को सुलह ना करना। बात तो एकदम सही बोली। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ी ललिता कश्यप नवीन नगर से, इन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है कि भैया भारत को जो है हमें बताया भारत में कॉफी राज्य कहाँ है। थैंक यू सो मच बताने के लिए जी। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? ये अवधीश चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हाल चाल है? बिल्कुल, छतों पर पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए, संतुलन बनाए रखें और सुंदरता को बढ़ावा देना चाहिए। अवंतिका कॉलोनी हमारे साथ MDU से जुड़ गए हैं हमारे प्यारे मित्र अवधीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश भी दिया है, आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये गाना अब तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले इनका वॉइस नोट पहुंचा देते हैं। जी सर।
1: तनाव भरी जिंदगी में अगर कोई आपको दो पल हंसा दे तो उसका भी एहसान मानिए, यानी कि उपकार मानिए। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, जीवन का यही कड़वा सत्य है। नमस्कार शह प्रेम, नमस्ते राधे राधे, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो राधे।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: देखियो दोस्तों, बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं। 9:53 का समय हो गया है और एक छोटा सा सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी आपने गाना सुना होगा, है ना? ये जो गाना था, इस गाने में एक सवाल है मेरा। ये मुझे बताओ, इस गाने के अंदर जो मैडम कह रही है, ये कह रही है प्यार का दीवाना या फिर ये कह रही है यार का दीवाना, इसमें से क्या सही हो सकता है?
2: मेरा दिल यार का दीवाना।
1: क्या है इसका सही जवाब? ये प्यार का है या यार का है, यही आपने मेरे को मैसेज करना है 9837896896 पर व्हाट्सएप करके बताना है इस गाने में क्या बोल रही है ये।
2: मेरा दिल यार का,
1: यार का या फिर यार का, क्या लगता है क्या है सही जवाब? ऑप्शन है यार का या ऑप्शन बी प्यार का, क्या है सही जवाब? मैसेज करो मुझे 9837896896। प्यार का बोल रहा है या यार का बोला है, यही आपने मेरे को लिख के बताना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
2: ये मेरा दिल यार का दीवाना।
1: यार का या प्यार का, क्या लगता है? मैसेज करो 9837896896। देखते हैं भाई कितने लोगों को पता है सही वाला जवाब क्या है। इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ अपना सही वाला जवाब। आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस लेडीज एंड जेंटलमैन। फटाक से व्हाट्सएप कर दीजिए।

हमारी कोठरी जो है ना एफएम मुरादाबाद की, वो रामलीला ग्राउंड पर है, आप इसमें बिल्कुल ला सकते हैं। आपका स्वागत है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। एक तो ये नाम बड़ा भैया अजीबोगरीब है इस पिक्चर का, हमको समझ नहीं आता कि आजकल नाम इतने लंबे काहे हो रहे हैं भैया, पिक्चर से ज्यादा तो उनके नाम लंबे हो जा रहे हैं। चलो भैया अब आपकी हल्की बात करते हैं। 9:58 स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है आनंद के साथ यहाँ, और अभी हम बात करते हैं कि ऐसे रसीले फल की जो गर्मियों

0: भी आप बचेंगे, बीमारियों से भी आप बचेंगे। और अगर आप लीची का सेवन करेंगे तो ये एक अच्छा फ्रूट है, गर्मियों का अच्छा फल है, सीजनिंग फल है, आप इसको जरूर खाएं। त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इसमें विटामिन ई भी बताया जाता है भैया, होता है जो आपकी स्किन को चमकदार बनाता है और आपको झुर्रियों से भी छुटकारा दिलाता है, आपके पाचन और कब्ज में राहत दिलाती है। लीची आपके जो है ना पाचन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है बॉस। शरीर को हाइड्रेटेड रखती है। लीची में पानी की मात्रा करीब 80-82% होती है, जो कि बहुत ही बढ़िया होती है। और गर्मियों में ये आपको पूरी तरह तरीके से मतलब ताज़ा तरीन आपको रखती है। तो भैया अगर आप लीची का सेवन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें करते रहिए और लीची खाते रहिए और अपनी सुबह को बिंदास बनाते रहिए। फिलहाल हमने आपसे पूछा था एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसका जवाब अगर आपने नहीं दिया है तो फिर आपने क्या ही किया है बॉस। एक बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है, थोड़ी देर पहले मैंने चलाया भी था। बस इसी गाने को आपने आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इस गाने के अंदर जो मैडम शब्द बोल रही है वो प्यार है या फिर यार है। ध्यान से सुनो जरा इस गाने के अंदर।
1: ये मेरा दिल यार का दीवाना,
0: प्यार बोला है या यार बोला है?
1: दीवाना दीवाना प्यार का परवाना।
0: दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी यार, इनमें से क्या है सही जवाब यही आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप करके।

चलो मैसेज करो, हमें इंतजार है आपके सही जवाबों का। और फिलहाल हमने हेल्थ की बातें भी कर ली हैं, काम की बातें भी कर ली हैं, सारी बातें तो हमने आपके साथ साझा कर ली है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। अब आपको क्या करना है, आपने मेरे को मैसेज करना है अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, किसी एक लकी वन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, सैटरडे की सुबह उनकी मॉर्निंग को बनाएंगे थोड़ा सा झकार, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। तो भैया इंतजार है हमें आपके प्यारे प्यारे जवाबों का।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: बताऊं, अब जाने का वक्त हो गया है, 10:07 हो गए हैं और अभी आज की सुबह मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था आप मुझे मैसेज करके बताओ इस गाने के अंदर जो मैडम ने एक शब्द कहा है वो प्यार है या फिर यार है।
1: ये मेरा दिल यार का दीवाना,
0: यही आपको आइडेंटिफाई करना था। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, थैंक यू वेरी मच, और अधिकतम लोगों ने गलत जवाब दे दिए हैं। बॉस मजे की बात यह है कि भैया किसी को पता ही नहीं है वो यार कह रही है या प्यार कह रही है, भैया कुछ भी बोले जा रहे हैं जी, गाने ध्यान से नहीं सुनते हो आप, इसका मतलब ये है। लेकिन तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया और आपके लिए भी यार कि आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं क्या है सही वाला जवाब। सबसे पहले मेरे पास इसका सही जवाब पहुंचा था, बता दूं या नहीं? Yes, of course, सबसे पहले राइट आंसर आया था हमारे पास रिजवान खान जी का ग्राम बीजना से। और ये लिखते हैं आनंद जी, ये कह रही हैं गाने में ये मेरा दिल, ओल्ड गाना है प्यार का दीवाना, लेकिन अभी ये बोल रही हैं यार का दीवाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं रीना से पूछ रहा हूँ, वो स्टूडियो में तो आई गई है इस टाइम पे, क्या लगता है रीना, ये यार बोला है या प्यार बोला है?
2: प्यार
0: या यार?
1: मेरा दिल यार का दीवाना।
0: यार बोला है उसने, प्यार बोला है
2: यार।
0: नहीं नहीं नहीं, प्यार बोलती है। देख देख देख, इसको दोबारा से, यार या प्यार?
1: ये मेरा दिल यार का दीवाना।
0: हमारे लिस्टनर प्यार बोल रहे हैं, क्या किया जाए। भैया कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, ये यार बोल रही है या प्यार, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट किया था मैंने, बट दैट इज राइट आंसर, यार। ध्यान से सुनो, 3, 2, 1 गो स्टार्ट। यार, यार का, सेकंड टाइम बोलेगी प्यार, आप बोलेंगी मैडम आप प्यार का जिक्र हो रहा है। Yes, तो भैया इसमें यार का जिक्र हुआ था और बाकी ढेर सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जैसे कि हमारे साथ जुड़े हैं मंसूरी कॉलोनी से, मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। लिखते हैं बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं और सही जवाब है यार का दीवाना, बिल्कुल रिजवान खान साहब और ये इरशाद हुसैन अंसारी जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, तालियां। और देखिए ललिता कश्यप जी, आपका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आपने गड़बड़ कर दिया जवाब, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी हमारे लिए, बहुत बहुत ये फख्र की बात है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे संदेश पहुंचाते हैं और हमारी सुबह को इतना बेहतरीन बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यार का दीवाना था, नॉट प्यार का दीवाना। अब तो भैया आप लोगों ने जो है अपने मैसेज भेज दिए हैं, अब क्या ही होगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं और आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे अपने मैसेजेस पहुंचाए हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अभी फिलहाल लेता हूं जाने की अनुमति, इजाजत, एक अच्छा गाना छोड़ के जा रहा हूँ। ललिता जी थैंक यू, हमारे साथ जुड़ी आप। अवधेश चौहान अवंतिका कॉलोनी एमडी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए। एक बेहतरीन गीत छोड़ के जा रहा हूँ, गुड मॉर्निंग ये मेरा दिल यार का दीवाना, दुर्गेश जी सही जवाब, ओपी शर्मा जी गड़बड़ कर दिया आपने भी, शबीना खान जुड़ चुकी है, बाकी और भी तमाम सारे श्रोताओं ने मैसेज किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए गाइस, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर तालियां बजा देता हूँ, अगली बार कोई पूछे ये मेरा दिल तो प्यार बोलेंगे या फिर यार, ये आपके हाथ में है। चलिए चलिए चलिए, अब लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, हमारी आपकी मुलाकात होगी मंडे की सुबह, आप ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत अगर आपने कर दी है तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जहां भी जा रहे हैं आपका जो दिन है वो शुभ रहे, मंगलमय रहे। टेक्स्ट मैसेज आया था, हेलो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? बहुत ही बेहतरीन जी, इन्होंने लिखा है वो बोलती है यार का दीवाना, एग्जैक्टली। नेहा स्वाति भी जुड़ गई है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है और लिखती है यार का दीवाना, दिस इज राइट आंसर। चलो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग मी, अब मिलते हैं आपसे मंडे की सुबह, ख्याल रखिए अपना, गुनगुनाते रहिए ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, हैव अ फैबुलस मॉर्निंग, सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद कहता है साइनिंग ऑफ, बाय।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक एनआईसीयू सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430। सुबह सुबह रेडियो ऑन न करने से पहले
2: माँ, मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ।
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। चाहते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 10:22 हो चुके हैं श्रोताओं। और अब यानी कि आज की तारीख 6 जून बहुत ज़्यादा खास है, और साथ ही साथ हमें हर सुबह बस एक ही ख्वाहिश रखनी चाहिए, मुस्कान की बारी है। याद रखिए, हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है खुश रहने का और सीखने का और आगे बढ़ने का। और आप सभी को सुप्रभात, और आई होप कि आप सभी अपने काम में व्यस्त हो गए होंगे। बहुत से तो ऐसे होंगे कि भैया उनकी ब्रेकफास्ट अभी चल रही होगी, बहुत से ऐसे होंगे कि अपने काम पर निकल चुके होंगे, काम कर रहे होंगे ऑफिस में जाकर, यार बस अब तो सिस्टम ऑन करो, काम करना है। ऊपर से भैया सूरज भगवान ना सुबह सुबह इतने ताबड़तोड़ वाले मतलब निकल जाते हैं ना अपने प्रचंड चमत्कार को लेकर, कि उनके तरफ देखना भी दुर्लभ हो जाता है। यानी कि बाहर निकलो घर से तो लगता है भैया किसी ने गली में ना भट्टी जला रखी हो, इतनी तेज धूप निकल जाती है सुबह सुबह। सो श्रोताओं, आप सभी से यही कहना चाहेंगे, आप अपने काम में व्यस्त है तो वेल डन, लेकिन रेडियो कभी आपसे ये नहीं कहता है कि अपना काम छोड़ो और हमें सुनो, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप कुछ भी काम करते करते रेडियो सुन सकते हैं। जो लोग अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं ना, मंजिल भी उन्हीं का इंतजार करती है। ये मत सोचिए कि हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सोचने वाला कभी सक्सेस नहीं होता है, बल्कि काम करने वाला सक्सेस होता है। तो अपनी मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि अपनी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकता है। और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो काम भी सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। श्रोताओं, तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, आरजे रीना कनेक्ट हो गई हैं, आप सभी प्यारी प्यारी मैसेज है वो भेज सकते हैं। आप आज की सुबह यानी कि शनिवार का दिन है, और शनिवार का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है। सो आप जो भी गाने सुनना चाहते हैं, आपके जो भी प्यारी मैसेज है, आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और कल, आप सभी को पता है कि कल है संडे, और संडे को आखिर हम यानी कि संडे एंजॉय करने के लिए ना पहले एक दिन पहले प्लान बना लेते हैं। तो कल संडे है, तो आप ये बताइए, गर्मी का मौसम भी है, तो आप कल संडे को क्या करने वाले हैं? मैसेज भेजिए हमें, नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, और उसके बाद एक मेरा फेवरेट गाना, उसके बाद आप सभी के मैसेज।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548।

बिल्कुल जी, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है, बस अपने काम पर फोकस करना है। क्योंकि जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं आपको अंदर से खुशी मिलती है कि चलो एटलीस्ट मैंने अपने जिंदगी में कुछ तो खुद के लिए अच्छा करा है ना। अदरवाइज आजकल का ऐसा जमाना है कि इंसान खुद के बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। इसीलिए इंसान परेशान रहता है कि भैया वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, कैसे पहन रहा है। पहली बात तो हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए। उसकी लाइफ है, कुछ भी करे, आपकी लाइफ है, आप कुछ भी करो, बस सोचो मत कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, क्योंकि कोई कुछ नहीं कहता है। कहता भी है तो एक दो मिनट के लिए, अगर एक बार दो शब्द बोल दिए तो बोल दिए, अदरवाइज किसी के पास इतना समय नहीं होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग भी तो हम खुद ही करते हैं। तो इसीलिए आज से एक ही ख्वाहिश रखिए कि दुनिया कुछ भी कहे, हमें तो बस अपना काम करना है। और जब आप बिना सोचे अपना काम करेंगे ना, तो आपको एक अलग ही सी खुशी होगी। चलिए फिलहाल हम अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं। तो पहले मैसेज की बात करूं तो पहला मैसेज आता है हमारे पास, हेलो रीना मैम, गुड वाला इवनिंग है मॉर्निंग मसाला शो में, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आपकी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है आज सूरज भगवान बहुत तेज प्रकट हुए हैं। बहुत गर्मी है मैम, पानी पीते रहना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पानी पीते रहना चाहिए। एंड आप, मैं आपका शो भी सुन रही हूँ और किचन में खाना भी बना रही हूँ। क्या बात है जी, एक हरियाणवी गाना सुनवा दीजिएगा जो आपका फेवरेट हो। ठीक है जी, बिल्कुल सुनवाएंगे। और इनका कहना कि खाना खा लो मैम। बिल्कुल जी, खाना खाने हम आएंगे। और जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा ये कि कल संडे है, तो संडे की क्या प्लानिंग है आपकी? तो मैसेज आता है, कल संडे है मैम और हम आपकी तरफ एक पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन कल संडे है, आपकी छुट्टी होगी इसलिए आपसे मिल नहीं पाएंगे। देखिए मैं कहीं और नहीं रहती हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, स्टूडियो में रहती हूँ, चाहे संडे हो या मंडे। वो अलग बात है कि कहीं दूर से मुझे चल के नहीं आना पड़ता है, मैं रहती यहीं हूँ। बस आप समझ जाइए कि मैं आपको जब भी आप आए, संडे मंडे ट्यूसडे, ऑल टाइम मैं आपको यहाँ मिलने वाली हूँ। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो रीना जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से, और रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, कितना प्यार तुम्हें करते हैं सनम। क्या बात है जी, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनाएंगे। बस आप मैसेज करते रहिए, आपके प्यारे प्यारे मैसेज बड़े खूबसूरत होते हैं। नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल एक हरियाणवी गाना सुनते हैं, जो कि मैम को हरियाणवी गाना सुनना था मेरी पसंद का, तो चलिए हम आपको हरियाणवी गाना सुनाते हैं और आप यूं ही आर्ज रीना के साथ बने रहिए और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, फ्रॉम मूवी एक लड़का एक लड़की। ये मूवी यानी कि 1992 में रिलीज हुई थी और आपने गाने की खूबसूरती आवाज सुनी है यानी कि कुमार सानू जी की आवाज में। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है यानी कि 10:42 और आज की तारीख 6 जून अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। तो आज 6 जून है और 6 जून को आखिरकार कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आइए हम सभी जानते हैं। सो आज इस दिन का उद्देश्य है लोगों को उच्च शिक्षा, कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से प्रकृति जागरूकता करना और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। और आज मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा दिवस जी, जिसका अधिकार बच्चे बुजुर्ग हर किसी को है। और देखिए, पढ़ाई के लिए ना कोई एज नहीं होता है, एज तो सिर्फ एक नंबर है। आप जब पढ़ना चाहे, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, जब आपका मन करे तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये किताबें ना दगाबाज तो होती है लेकिन कामयाब करके छोड़ती है। आपको बार बार बोलेंगे कि मुझे पढ़ो पढ़ो, आपको ज्ञान मिलेगा पढ़ने से, आपको ये हारने का मौका भी देगी। और जब ये जिताती है ना तो ऐसा जिताती है कि भैया आपका नाम है यानी कि आपके नाम के साथ साथ घर वालों का नाम भी गर्व से ऊपर हो जाता है। और साथ ही साथ यानी कि आज उच्च शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं है बल्कि बेहतर भविष्य और नई संभावनाओं की कुंजी है। तो इसे संभाल कर रखना, और मुझे लगता है किसी और चीज़ में ध्यान देने से बेटर है कि आप अगर खाली बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपके पास काम नहीं है, व्हाटएवर जो भी कुछ है, लेकिन आप बुक लेकर बैठ जाओ, आपको देखिए ज्ञान मिलेगा और दूसरों के बारे में ओवर थिंकिंग करने से आप बचेंगे। तो मुझे लगता है खाली टाइम में बुक हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है और हमें उसे पढ़ते रहना चाहिए। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, किन क्या क्या मैसेज आते हैं हमारे पास और क्या कहना चाह रहे हैं। ये कुछ लाइनें भी लिखकर भेजते हैं, जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है कि खुद को बदल लो। ये कहते हैं भगवद गीता में यही लिखा गया है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। और साथ ही साथ पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हो आप? बिल्कुल जी, हम बहुत बढ़िया हैं। और इनका कहना है कि गुंजाइश हो तो ये गाना सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, हम आपको गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे। और इनका गाना है रुक से जरा नकाब उठा दो, ये गाना है। सो इस गाने को हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अंसारी सतीश जी, और इन्होंने अपने दोस्तों का नाम मेंशन किया है नगर, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं काशी नगरी बनारस से कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना भी सुना है और आपने लाइनें भी बहुत प्यारी लिखी है। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, जय श्री राम रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे है? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से, और गाना सुनना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत गाना है, इस गानों को हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, जय माता दी, राधे राधे राधे राधे सर, हार्ट टचिंग प्रेजेंटर आरजे रीना जी, क्या बात है जी। और एक से बढ़कर एक लाजवाब जो गाने आप सेलेक्ट करने हैं, सच बताओ बहुत ही प्यारे होते हैं और इंजॉय द ब्यूटीफुल प्रोग्राम, क्या बात है जी। अच्छा बात है कि आपको अच्छी लग रही है हमारी शो है, जो हमारा अच्छा लग रहा है आपको। और ये आगे लिखते हैं, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजीत कासाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कासाना काट रोड लदावली से कनेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपके जो प्यारे मैसेज होते हैं ना, सच में ही बड़ा खूबसूरत मैसेज होता है आपका। का। लेकिन श्रोताओं, अगर बात करूँ तो यानी कि देखिए शो के साथ साथ ना हमारे यानी कि कमर्शियल एड ब्रेक का भी टाइम हो जाता है, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपना मैसेज भेजते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सभी के मैसेज होते हैं वो ज़रूर शामिल किए जाते हैं। और आज सुबह मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा है कि कल संडे है और संडे की क्या प्लानिंग है आपकी, तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 पर आपने मैसेज करके बताने हैं। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ,
5: चावला टायर
3: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

अच्छा फील होता था उस टाइम। मैं तो सच बताऊँ, जब मैं अपने नानी के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे उनके इतने बगीचे इतने ज़्यादा है, तो मैं उनके नानी के साथ जब भी बगीचे में जाती हूँ तो कोयल कुकू कुकू बोलती रहती है, फिर मैं उसे बातें करने लग जाती हूँ, और जब भी आप कुछ बोलोगे तो बोले कु इस तरीके से आवाज वो बोलती है, तो मतलब एक तरीके से हम उससे बात करें, वो हमारी बातें सुनती है। जितने भी पशु पक्षी है वो आप उनसे बात करके देखिए, वो आपके बातें सुनते ज़रूर है। हमें लगता है कि यार ये कैसे सुन पाती होगी, लेकिन वो सुनते ज़रूर है। आप अपने घर में तोता पाल के देखिए, आप उससे बात करेंगे, जैसा बोलने के लिए सिखाएंगे वो ऐसा ही बोलते हैं। आप गुड इवनिंग बोलेंगे शाम के लिए तो गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। आप जो भी आपको उसको सिखाएंगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू फारसी जो भी आप सुने सिखाएंगे, वो उसको सीख लेता है। सो चलिए आगे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद सारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? सैटरडे में आपको सुनते हैं, अच्छा लगता है, मॉर्निंग बिंदास हो जाती हैं, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, पास हुआ पास वो आने लगे जरा जरा, क्या बात है जी, जरा जरा पास आने लगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास

0: सीए कनेक्ट होते हैं। जनकपुरी सहारनपुर से रिस्पेक्टेड आरजे, और ये गाना सुनना चाहते हैं, कोई नजराना लेकर आया। क्या बात है, मूवी का नाम है आन मिलो सजना। मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं, और ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 1970 की मूवी है ये, बहुत ही खूबसूरत मूवी। चलिए फिलहाल श्रोताओं, न्यूज का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: निर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान

0: खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
7: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
6: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
8: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
9: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
10: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना एंजॉय किया है। और फ्रॉम मूवी है मन मिलो आन मिलो सजना, यानी कि मूवी रिलीज़ हुई थी 1970 के दशक में। चलिए, यानी कि उस टाइम के गाने सदा बहार, जो कि बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। गुड वाली मॉर्निंग है श्रोताओं, और आप कनेक्ट हैं मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 11:16 हो चुके हैं, और आइए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किन का क्या मैसेज आते हैं हमारे पास। यानी कि ये मैसेज है, रीना दी नमस्ते, मुझे एक गाना सुनवा दीजिएगा, नायक नहीं खलनायक है तू। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है मोहिनी कुंदन पूर्व मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास, गुड मॉर्निंग, हाय दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी। और जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा था कि कल संडे है, और संडे की क्या आपको कहाँ घूमने की प्लानिंग चल रही है, तो इन्होंने बताया है कि हम कल वृंदावन जाने वाले हैं। क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत जगह है वृंदावन। नाम सुन के ही बस ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वृंदावन चलो यार घूमने के लिए। क्योंकि सच बताऊँ, जब आप वृंदावन के गलियों में घूमते हो ना, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही फील आपके अंदर महसूस करते हो आप। ऐसा लगता है कि सच में, मतलब जिन गलियों में भगवान नंगे पाँव घूमे हैं, उस गलियों में देखिए आप जा रहे हैं घूमने के लिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। सिसवा दौरा से कनेक्ट होते हैं नई मूल अकरम जी, और ये कहना है गाना, इनका कहना है चाल हमारी हो बाज की तरह। क्या बात है, गाना सुनना चाहते हैं हमेशा हो सज की तरह। और आज हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो रीना जी, खुशी जी और राज की धारा। आय हाय क्या बात है जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, टिप टिप बरसा पानी। हाँ, पानी से मुझे याद आया कि एक बार वेदर अपडेट की भी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज है 6 जून, और 6 जून का जो मौसम है, यानी कि यूपी के कई जिलों में आज आंधी तूफान बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अलर्ट जारी की गई है, और साथ ही साथ ये बारिश कहाँ आ सकती है मैं बताती हूँ आपको, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज के आसपास, यानी कि अयोध्या, मिर्जापुर में बारिश बताई जा रही है। यानी कि यूपी के कई जिलों में आंधी तूफान बारिश आने की संभावनाएं हैं। और दिल्ली की यही बात करूँ तो भैया, सुबह सुबह ही यानी कि सूर्य देव भगवान बोले कि पहले बहन तू आगे चल, फिर मैं पीछे से आता हूँ, क्योंकि जो तू गीले कपड़े करके आएंगी ना, घर को गीला करके आएगी, उसको मैं सुखाने का काम करूंगा। और मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूँ भैया, तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस टाइम, यानी कि प्रचंड वाला जो गर्मी है आज का, क्या ही कह सकते हैं। और ऊपर आज की भैया 36 डिग्री यानी कि टेम्परेचर की बात करूँ तो शाम यानी कि 4 बजे तक जो हमारा टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। और ना ही आज बादलों वाला सूरज होगा, बल्कि आज खुली आसमाओं के साथ सूर्य भगवान है प्रकट हो गए हैं, आज कोई बादल नहीं है। और आज गर्मी रहने वाली है, भयंकर वाली, 38 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने वाली है। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूँ एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, आप सभी के मैसेज भी शामिल करते रहेंगे। फिलहाल आप मैसेज करते रहिए। चलिए एक और गाना, नायक नहीं तो खलनायक।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है कि एक दिन का साथ नहीं है, पूरी उम्र का साथ है। और आपने ये गाना एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, बड़ा ही खूबसूरत गाना। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 11:30 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में। गुड वाली मॉर्निंग है जी, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कल यानी कि जन्मदिन था यानी कि हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने यानी कि अपने जन्मदिन के मौके पर, यानी कि 54 साल के हो चुके हैं वो, और उन्होंने संकल्प लिया कल एक शुरुआत की। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि कल था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस पर क्या यानी कि हर किसी को उन्होंने यही कहा है कि अपने घर आसपास एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप डेली नहीं लगा सकते, लेकिन हफ्ते में, महीने में 2 पेड़ तो एटलीस्ट आप लगा ही सकते हैं। तो इसी के साथ उन्होंने क्या करा है सुनिए ज़रा। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया है और शुरुआत कर दी है, और उन्होंने एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि कल उन्होंने लक्ष्य रखा था और उन्होंने कल पेड़ भी लगाया। और सभी भारतवासियों से यही अपील की है कि आप सभी जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, मातृभूमि है, वो शुद्ध और स्वस्थ हो सके। और हम सभी इसकी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना पर्यावरण को रक्षा करें। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में भयंकर गर्मी की जो प्रचंड तांडव है, उसका मतलब जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, जिसमें लोग यानी कि ठीक से, मतलब गर्मी में कैसे इंसान रह पाएगा। उस टाइम ये कहा जा रहा है कि AC तक भी काम नहीं करेंगे, जब टेम्परेचर 60 से ऊपर जाएगा तो सोचिए इंसान की क्या हालत होगी। और यही इतनी गर्मी है जो आजकल हम पक्षियों को कम उड़ते देखते हैं, बहुत ही कम पक्षी हो चुके हैं। मतलब गौरैया तो दिखती नहीं है, जो कि मेरा फेवरेट यानी कि बर्ड्स हुआ करता है वो। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़े, तो अगला मैसेज आता है हमारे पास। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम जी। और ये कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है प्यार प्यार हमारा अमर रहेगा। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, माय नेम इज अजय कुमार, सिहाइल खदर जिला मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। और कुछ साथियों के नाम हैं मोहित कुमार, विजय कुमार, बंटी कुमार। क्या बात है जी, इन्होंने अपने साथियों का नाम भी मेंशन किया है। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है, लेकिन इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। ये कहते हैं कि मैम एक शायरी है। हाँ जी बिल्कुल सुनाइए रीना जी, एक शायरी है। अब ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पे हक जमाएंगे। क्या बात है, बस यूं ही खामोश होकर 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। ओए होए क्या बात है जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, हर इश्क करोगे तो दर्द मिलेगा। आए हाय, इश्क में अक्सर दर्द मिलता ही है जी। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आते हैं हमारे पास।

ये मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आजाद नगर कलोना मुरादाबाद से सैयद सारी के लिए जी कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त हैं इरशाद अंसारी, और एक गाना सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, गाना सुनवाएंगे हम इस तरह, यानी कि ये गाना है, ये हम गाना जरूर आपको सुनवाएंगे। चलिए फिलहाल एक और प्यारा सा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करते हैं ढेर सारी बातें और आप सभी के मैसेज शामिल करेंगे।

क्या बात है जी, बहुत। और प्यार हमारा अमर रहेगा, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में, आशा भोसले जी की आवाज़ में गाना आपने एंजॉय किया है, और साथ ही साथ मिथुन चक्रवर्ती इस मूवी में, और जया प्रदा, जो कि इनकी मूवी है ना, बहुत ही खूबसूरत हैं। चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमारे पास किन का आता है? रीना जी नमस्कार, हम भी आपका शो सुन रहे हैं। कल पर्यावरण दिवस पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मनाया है, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उमा शंकर सिंह, अवंतिका सैनी, अर्चित सिंह, और ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ रुद्रापुर देवभूमि मुरादा उत्तराखंड से ये कनेक्ट होते हैं, और इन्होंने कुछ फोटो भी हमारे साथ शेयर करे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों ने भी कल पेड़ लगाए हैं, यानी कि कल पर्यावरण दिवस पर इन्होंने विद फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया है एक पेड़ लगाकर। और ये जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक अभियान शुरू कर दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो आप सभी एक पेड़ अपने घर में कहीं भी ज़रूर लगाइए, और उस पेड़ की फिर आपने देखभाल भी करनी है। ये नहीं कि आपने वो पेड़ लगा दिया और बस वो अपने आप होता रहेगा, जब तक हमें भूख लगती है ना तो हम भी खाना लेते हैं, इसीलिए पेड़ को भी समय समय पर पानी खाद ज़रूर चाहिए। और उमा शंकर सिंह जी आगे लिखते हैं कि मैडम जी एक फरमाइश है, गाना सुनना चाहते हैं उड़े जब जब जुल्फे तेरी। क्या बात है जी, गीत की फरमाइश है ये, थैंक यू सो मच सर, ये हम आपको गीत ज़रूर सुनवाएंगे। और ये लिखते हैं

मैडम जी, आपको सह प्रेम प्रेम भेंट यानी कि एक पौधा भेंट कर रहे हैं मुझे। अब बताइए सर, मैं ऑनलाइन कैसे, व्हाट्सअप से कैसे ले लूँ? देखिए, आप उत्तराखंड से हैं, देवभूमि से हैं, और बस वहाँ से आपके मैसेज आते हैं, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप देवभूमि उत्तराखंड से भी हमारा शो सुनते हैं। और आप जब भी मैसेज करते हैं, जब भी अपने बगीचे की फ़ोटो ज़रूर शेयर करते हैं, या पेड़ लगाते हुए फूलों की जो मतलब फ़ोटो खींचकर ज़रूर शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास,

0: रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए। और ये गाना सुनना चाहती है, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। क्या बात है जी, जो आपके दिल ने मांगा वो आपको मिल गया। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, कि जब जिस चीज़ की आप ख्वाहिश करो और जब आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए तो बस तमन्ना और कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है। चलिए श्रोताओं, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और एंजॉय करते हैं अपना शो।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: हाय डियन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना एंजॉय किया आपने, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। और जो पुराने सदाबहार गाने होते हैं ना, बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने होते हैं। पुराने जितने भी गाने हैं, आप जितनी बार भी सुनो उतनी बार आपका मन नहीं भरता है, बस यही मन करता है यार ये सुनते रहो। तो चलिए, एक प्यारा हमारे पास वॉइस मैसेज आता है, सो उनको सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं शो में, क्योंकि समय की बात करूँ तो 11:53 हो चुके हैं और मॉर्निंग मसाला शो में आज रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। चलिए प्यारी सी वॉइस सुनते हैं।
1: नमस्कार FM की दुनिया के दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जिसे बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है। जी, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। प्रोग्राम मॉर्निंग मस्ती, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है RJ रीना जी के द्वारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जिंदगी का सच, हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं, बदलते हैं तो सिर्फ समय, संयोग और नज़र। इसीलिए खुश रहिए, बिंदास रहिए, बजाते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz। रीना जी, एक गाना सुना दीजिए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। नमस्कार, राधे राधे।
0: नमस्कार, राधे राधे सर। और आप जो भी लाइनें बोलते हैं बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी होती हैं। सो चलिए अगले मैसेज की बात करते हैं। अगला मैसेज आता है कश्मीर से, मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है। क्या बात है जी। गुड मॉर्निंग आर्जरीना, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। कश्मीर से आपका शो एंजॉय कर रहे हैं, मिस यू प्रोग्राम। ओए होए, क्या बात है जी, लग रहा है काफ़ी दिन बाद कनेक्ट हुए हैं क्या सर। चलिए, फिलहाल और भी मैसेज है, उनको भी हम शामिल करेंगे और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। फिलहाल एक प्यारा सा गाना।

0: डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
1: कॉल 7500153841।
2: बसंती इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
4: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सहअध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट

0: के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। मॉर्निंग मसाला शो में आई नो कि 12:05 हो चुके हैं श्रोताओं, लेकिन आप सभी के जो मैसेज रह गए हैं उनको भी तो शामिल करना है ना। चलिए मैसेज शामिल करते हैं, यानी कि टेक्स्ट मैसेज रह गए हैं अभी भी। हाय राम राम रीना जी, और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं कार्तिक गुप्ता और इनके छोटे भाई यानी कि शक्ति। हम सभी लाइन पार से हैं, लाइन पार मुरादाबाद से, और ये गाना सुनना चाहते हैं बंजारे। ओके, हम आपको ये गाना ज़रूर सुनवाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, हाय मैम कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, आई मिस यू। ओहो, थैंक यू सो मच जी कि आप मिस कर रही हैं मुझे, और ये गाना सुनना चाहती है प्यार से भी ज़्यादा तुझे प्यार करते हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग मैम कैसी हो आप? मेरी एक फरमाइश है वो पूरा कर देना। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। क्या बात है जी, सृष्टि हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। सो श्रोताओं, इसी के साथ मिलती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज, और एक मैसेज आया था जो गौरव टेलर जी ने किया था, उन्होंने एकदम डिलीट कर दिया। उनको लगा कि न्यूज़ शुरू हो चुका है तो शायद अब जो रीना मैडम नहीं कनेक्ट हो पाएंगी। तो सर हमने अभी तक, यानी कि आपने रेडियो लेट सुनना शुरू किया है और हमने अभी तक बाय नहीं बोला था, अब हम बाय बोल रहे हैं। हम आपको मिलेंगे दोपहर 3 बजे, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, पानी पीते रहिए और गर्मी से बचे रहिए।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है, गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं। लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: स्वागत विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियां झिझक मौजूद है।
0: सच कहूं सियतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो आरजेरीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: देखिए आरजेरीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: बिल्कुल आरजेरीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या

0: फिर समय पर बदल नहीं पाती क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
1: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
0: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
0: देखिए आर्जेरीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
1: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
0: बिल्कुल आर्जेरीना, हमारे गाँव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
1: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
0: बिल्कुल आरजे रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा, वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
1: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
1: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। अपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है, या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है। इसका
1: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं, और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
1: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
0: देखिए आर्जेरीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
1: तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना, और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए तो जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो स्रोत हैं, उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी, सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आरजी रीना आपने, और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ। मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: नाम सुनते ही जैसे

0: मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ़, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आँच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा अर्जेरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम,
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी, अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी
4: जी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है? युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ जाते जाती
4: फैमिली
3: हैं। जी मैम,
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन,
3: हाँ एक जनपद एक व्यंजन
2: जिसके तहत हम आके आपसे

0: बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
1: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम हैं वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
2: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
3: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
2: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
3: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
2: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
3: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
3: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
2: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
3: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
2: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
3: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
2: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
3: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
2: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
3: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
2: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
3: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
2: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
3: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
2: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
4: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार।
3: तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
3: जन जन तक पहुंचा संदेश।
4: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे RJ आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त RJ रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों RJ रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
7: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
6: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
7: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
6: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से AC में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
7: बिल्कुल सही।
6: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं, इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
7: और स्टूडियो में ना तब भी राहत मिल रही है, सच बताऊं। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी, मिर्ची वाली धूप लग रही है।
6: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गाँव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गाँव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर।
0: ओके।
1: पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं, तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पर हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें, सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसके की जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी
0: हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, जरूर लगाइए,
0: जरूर लगाइए। अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुमने देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था,
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्राकृतिक है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता
0: है, सब्जियां
1: देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पे कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कॉन्ट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: इस घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना। ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी, तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो, बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी
0: होता है,
1: वेस्ट होता
0: तो
1: है।
0: वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए।

0: जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा के वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों के वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास, अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
2: कॉल 8826213131।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी।
8: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। आपके साथ मैं हूं आशीष और
9: मैं हूं भावना। आज का हमारा यह विशेष शो समर्पित है हमारे समाज की उस शक्ति को जिसके बिना संसार अधूरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में।
8: बिल्कुल, तो भावना, आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बेटियों को बोझ समझा जाता है, पता है आपको? लेकिन सरकार की इस पहल ने लोगों की सोच बदलने में एक बहुत बड़ी लहर पैदा की है।
9: बिल्कुल आशीष, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते लिंगानुपात को सुधारना और बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है।
8: बिल्कुल जरूरी है भावना, क्योंकि सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात की हम बात करते हैं, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब हम उनके अनुपात की बात करते हैं तो कई बार ये भी सवाल आता है कि अरे बेटियां तो कम हैं, जब बेटियां ही कम हो जाएंगी तो वंशावली कैसे बढ़ेगी, कैसे देश बढ़ेगा, कैसे समाज बढ़ेगा।
9: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष।
8: और सिर्फ यही नहीं भावना, इस योजना का फोकस लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, यानी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या होती है उसे रोकना और लड़कियों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करना भी है।
10: एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बेटियों के लिए नए अवसर और उज्जवल कल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से आरंभ हुई इस यात्रा ने पूरे देश को बेटियों के प्रति अपनी सोच बदलने का संदेश दिया। इस अभियान के तहत प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने बेटियों को अपने पंख फैलाकर उन्मुक्त उड़ान भरने के सभी अवसर प्रदान किए। उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। हरियाणा में 2014 के मुकाबले लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। आज हरियाणा सहित पूरे देश की बेटियां हर क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं।
11: मेडिकल फील्ड हो या खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं।
10: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना ने हौसला बढ़ाया है।
11: भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाए, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है।
9: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है?
8: चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जो सरकार बेटियों के भविष्य के लिए दे रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना।
9: सही कहा आशीष आपने, यह बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए बचत करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसमें बहुत कम राशि से खाता खुलवाया जा सकता है और ब्याज दर भी काफी आकर्षक है।
8: बिल्कुल सही कहा आपने भावना, इसीलिए तो सरकार कहती है जब पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियां।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नु रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।
8: भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और विभिन्न छात्रवृत्तियों जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं उसके जरिए ये सुनिश्चित किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी बेटी की पढ़ाई के बीच में ना आए।
9: और तो और आशीष, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी सुरक्षा योजना और मात्र

0: रूप से जहां उनका भविष्य बनना होता है लेकिन वो बन नहीं पाता। भावना, ये आप तो जानती हैं कि बहुत बड़ा विषय है और मैं तो आपसे इसलिए भी बात करना चाहता हूं क्योंकि आप खुद एक बेटी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी देखे हैं और आप एक समाज सेवी की तौर पर भी काम करती रही हैं और आपने अपने उस समाज सेवा में भी कई नन्ही जानों को जो बेटियां हैं उन्हें अपने हाथ में खिलाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि आखिर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान कितना जरूरी हो जाता है ऐसे हालातों के बीच में।
1: आशीष, हम जरूर बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी परिवार का हर सदस्य आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है आशीष, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ऑर्फनेज में काम किया था तो जो अनाथ बच्चों की संख्या बेटों की अपेक्षा बेटियों की ज्यादा थी। बहुत अधिक अनुपात में बेटियां रोड के किनारे लावारिस अवस्था में, कहीं कूड़े के किनारे तो कहीं कहां तो कहीं कहां, ऐसे मिलती थी। ऐसी बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी।
0: बिल्कुल भावना, और कहीं ना कहीं इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इतनी गंभीर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए, और वो चाहती है कि जो सेक्स रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, जो लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, वो सुधरे, बल्कि बेटियों की संख्या ज्यादा करने पर जोर दिया जाता है। अगर बहुत सारे देश के ऐसे राज्य हैं, खासकर हम जब हरियाणा या राजस्थान का जिक्र करते हैं, वहां पर इस तरीके के मामले बहुत आते थे। एक समय तो ऐसा भी हरियाणा में हो गया जहां बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, उनका जो लिंगानुपात था वो इस स्तर पर पहुंच गया था कि चिंता का विषय बन गया था कि अब यानी कि जिनके बेटे थे उनकी शादियां कैसे होंगी।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, क्योंकि ये जो आप बात बता रहे हैं वो लगातार जारी है, क्योंकि लोगों को अपने बच्चों के लिए यानी बेटों के लिए बेटियां मिलना मुश्किल हो गई थी आशीष।
0: अच्छा, तो आपको भावना नहीं लगता कि इसमें सबकी गंभीरता और सजगता बहुत जरूरी है, खासकर वो माँ जो खुद एक बेटी है किसी की, जो खुद एक लड़की से माँ बनती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी इस बात को एक्सपेक्ट करती है कि उसको बेटा पैदा हो।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, लेकिन ये कम कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब शिक्षा की बात हमारे और सभी बच्चियों के लिए एकदम जिसे कहते हैं अनिवार्य हो जाए। अनिवार्य तो खैर सरकार ने कर ही दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ और इसका इम्प्लीमेंटेशन करें कि बेटियां आगे बढ़ सकें।
0: बिल्कुल जरूरी है और जागरूकता फैलाना जरूरी है, इसीलिए हम अपने रेडियो चैनल के जरिए सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि बेटियों को सहेज कर रखिए, यही असली धन है। ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो ये सिर्फ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि आपके परिवार और आपके समाज को एक बहुत मजबूती के साथ संबल देते हुए भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की कोशिश करेंगी। इसीलिए बहुत सारी बेटियों की सफलता की कहानियां भी हम आगे अपने कार्यक्रमों के जरिए बताएंगे, सुनाएंगे, उनके बदलाव भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है भावना कि हवा बदल रही है क्या? आज ओलंपिक से लेकर अंतरिक्ष तक अगर आप देखें तो बेटियां ही तिरंगा फहरा रही हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा ही नहीं है, यह एक जन आंदोलन बन चुका है। हमें अपनी सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेटी है तो कल है।
0: बिल्कुल, अभी तक हम ये जरूर कहते हैं कि जल है तो कल है, लेकिन बात जल की नहीं, बात है बेटी की। बेटी भी एक जल, जल जो कि जीवन के लिए जरूरी है, और बेटी भी है जो खुद में जीवन है। अगर बेटी है तभी कोई ना कोई संतान इस दुनिया में आएगी जो भविष्य में अपना कहीं ना कहीं एक अलग मकाम हासिल करेगी। अगर बेटी नहीं है तो जन्म होना किसी का ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए बेटी है तो कल है। हमारी सरकार, हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारे तमाम तरीके की गैर सरकारी संस्थाएं या जिम्मेदार लोग सभी यही जागरूक करना चाहते हैं कि हमें अपनी बेटियों को सहेज कर संभाल कर रखना चाहिए, उनकी संरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनकी पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए। और शायद भावना यही श्रोताओं के लिए संदेश भी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आशीष आपने, तो रेडियो के सभी श्रोताओं से हमारी एक अपील है कि अपने आसपास

0: किसी भी बेटी की पढ़ाई रुकने ना दे। यदि आप किसी ऐसी बेटी को जानते हैं जिसे सहायता की जरूरत है तो सरकारी हेल्पलाइन या पास के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें।
1: बिल्कुल, और याद रखिए, जब एक बेटी पढ़ती है तो दो परिवार संवरते हैं।
0: तो जाने का वक्त हो गया है, पर यह चर्चा आपके घरों में हमेशा ही जारी रहनी चाहिए श्रोताओं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा, एक ऐसा विषय है जो कभी ना खत्म होने वाला, ना रुकने वाला विषय है। बेटियां हमेशा इस देश को, इसकी तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाती रहेंगी। बेटियां आज हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो विज्ञान हो। वैज्ञानिक के तौर पर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में बेटियां जा रही हैं, खेलों में बेटियां जा रही हैं, और इसीलिए भावना कहते हैं, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओं, सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो, खुश रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाइए
1: और बेटियों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि बेटियां हैं तो हमारा समाज है, और हमारा समाज है तो हमारा
0: कल है।
1: तो आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
5: प्रकृति से खुशियों की लहर।
6: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
8: सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
8: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
9: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
8: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
10: With Nepal, we have an expansive agenda.
11: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
10: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
8: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
12: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
8: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
13: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी

0: सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: क्लेम्स बाय पाकिस्तान वुड नॉट चेंज दिस फंडामेंटल रियलिटी।
2: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
7: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
8: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
7: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए शो महिला मंच, जहाँ हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो श्रोताओ, हमारे समाज में ना लंबे समय तक बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। कई परिवारों में बेटी को जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसी सोच के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अभियान सीधा एक संदेश देता है, बेटी को बचाना जरूरी है और उसे पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तभी सब परिवार आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जब बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को रोशन नहीं करती है, बल्कि वो तीन पीढ़ी को रोशन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीन पीढ़ी को कैसे रोशन करती है। तो पहले तो अपने माता पिता का घर, दूसरा ससुराल, तीसरा अपने बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती है। तो देखा, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि तीन तीन पीढ़ियों को रोशन करती है। तो इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटियों के प्रति ना हमारा सोच हमें बदलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा, बल्कि उन्हें गिराना नहीं होगा, डीमोटिवेट नहीं करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सो यूं ही ढेर सारी आज हम बेटियों के ऊपर बात करते रहेंगे। बस आप आरजरीना के साथ महिला मंच में यूं ही कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार और कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ साल पहले देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसका मुख्य कारण था लड़कियों के जन्म को महत्व ना देना। कई जगहों पर बेटियों को पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया जाता था। यही वजह कि सरकार को एक ऐसा अभियान शुरू करना पड़ा जो लोगों की सोच बदल सके। इस अभियान का मकसद था बेटी को जन्म देने का अधिकार, बेटियों को शिक्षा देना और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान देना। पहले के टाइम में होता था कि जैसे बेटी जन्म होती थी ना, उसको वहीं पर मार दिया जाता था। कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए खर्चा बनाएगी, यानी कि पहले हम इसको पालेंगे, फिर ये बड़ी होगी, फिर शादी में खर्चा। तो बहुत सी ऐसी सोच थी जो लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, बल्कि उनके जन्म पर ही उनकी जिंदगी हम छीन लेते थे। लेकिन ये जैसे जैसे सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, हम सबकी सोच बदली और आज यही दिन है कि लड़कियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सो ढेर सारी बातें हम आप सभी के साथ करते रहेंगे, बस आप यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जब समाज की सोच बदलेगी तभी असली बदलाव आएगा। आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं महिला मंच शो में और यू ही हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, सुनना बिल्कुल ना भूले अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में बेटियां ही नहीं होती तो क्या होता? ना घर में बहन की हंसी होगी, ना माँ की ममता, ना राखी का त्योहार होगा। बेटियां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती बल्कि पूरे समाज की ताकत होती हैं। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल, पढ़ाई, सेना, विज्ञान, हर जगह अब बेटियां आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है उन्हें सही मौका देने का, और जब मौका मिलता है तो बेटियां दुनिया जीत लेती है। तो दोस्तों याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी गर्व है। और सुनते रहिए एक और शानदार गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे हम, और हमारी देश की बेटियों के लिए गाना है। सो यूं ही आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी

और किसी ने सच ही कहा है, जब बेटियां होती है तभी घर में रौनक होती है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और सच ना है कि अगर बेटियां नहीं होती, और सच तो ये है कि अगर बेटियां नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं ना, जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी को जन्म लेने के लिए मना करते हैं। आखिरकार बेटियां जननी होती हैं, जिसने इस दुनिया को रचाया आज उसी को जीने का और उसी से जीने का अधिकार आज हम छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जननी है उसको जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहन, बेटी, माँ, मित्र है आप सभी के लिए, जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वो घर में होती है ना तो घर का रौनक ही अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में जब भी स्कूल से घर आते थे तो सबसे पहले हमारे मन में ना एक ही ख्याल आता था, माँ। माँ कहाँ है? अगर आपको पूरे घर में माँ की झलक ना दिखे तो पूरा घर को ना हम सर पर उठा लेते थे। तो सोचिए, जब माँ घर पर नहीं दिखती है तो हम पूरा घर को सर पर उठा लेते हैं और उस जननी को हम जन्म देने से डरते हैं। तो डरिए मत, बेटी है, जननी है, माता है, और जब जननी आगे बढ़ती है तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस बने रहिए आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जेरीना के साथ।

अंजी आर्जरीना के साथ अब कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। आज के समय में ना शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ तक बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेटों के लिए है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपने जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। पढ़ी लिखी बेटियाँ सही फैसले लेती है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी आरजे रीना के साथ।

आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओं, अब हम बात करने वाले हैं जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पुलिस ऑफिसर बन रही हैं। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ, और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन

हाँ जी, आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बस एक ही रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि अगर आपके घर में बेटी है तो आप उसे अपने सपने पूरे करने का मौका दीजिए, उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि वही बेटी एक दिन आपका नाम रोशन करेगी।

हां जी, की हाल चाल है आर्जरीना के साथ? एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जरीना के साथ। और अब आर्जरीना लेती है आप सभी से जाने की इजाजत। सो बस एक ही बात कहना चाहेंगे आप सभी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां हमारे समाज की ताकत है, उन्हें मौका दीजिए और देखिए वो कैसे दुनिया बदल देती है। इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है जी। और सुनते रहिए अपने शहर का।

0: लाल यानी कि हेलो जी हेलो गुड वाली आफ्टरनून है आरजेडीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 3:12 हो चुके हैं और श्रोता आप सभी का शो यानी कि शुरू हो गया हेलो फरमाइश शो, जो कि आप सभी के लिए 2 घंटे के लिए यानी कि जो भी आप सभी के फरमाइश वाले गाने होते हैं वो प्ले किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अपने फ़ोन उठाना है और हमें कॉल करना है, नंबर है 9837896896 पर आप हमें कॉल करके गाना सुन सकते हैं। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये शो आपका ही है और आपका जो प्यार मिलता है ना वो और भी ज़्यादा हमारे लिए, मतलब कुछ शब्द नहीं होते, इतने अच्छे आपके जो फीडबैक आते हैं, आप सभी के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए हेलो फरमाइश शो में देखते हैं अगले फर्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं। हेलो, हाँ
1: गुड
0: जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: आफ्टरनून, बताइए। बस
0: बढ़िया हूँ सर मैं, आप बताइए कैसे हैं।
1: अल्लाह बताओ,
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए
1: हम भी देखा। मैं एक सॉन्ग सुनना था। मैं
0: जी। वो तो सुनवा देंगे, आप अपने अपना नाम तो बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ, दलबतपुर से। मेरा
0: ओके जी, क्या नाम है आपका। हाँ
1: मोहम्मद मुजीब नाम है।
0: जी बताइए, कौन से गाने सुनेंगे।
1: ये मूवी है लाल दुपट्टा मलमल का, और सॉन्ग का नाम है क्या करते साजना तुम हमसे दूर रहते। नहीं
0: गाना चेंज कर दिया सर,
1: जी,
0: क्या करते थे साजन नाम से दूर रह के। ठीक
1: ठीक
0: है जी, सुनवाते हैं आपको, ठीक है।
1: है सर,
0: ओके जी,
1: धन्यवाद।
0: ओके जी सर, चलिए हम गाना सुनते हैं, यानी कि क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के। ये बहुत ही प्यारा गाना है, दूर रह के कुछ नहीं करते जी, बस काम में व्यस्त रहते हैं। सो इस गाने को एंजॉय करेंगे और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप भी कॉल करते रहिए। हमारा नंबर है 9837896896 और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इस वीक कॉल किया है मंडे ट्यूसडे वेनसडे, सो वो कॉल ना करें, क्योंकि आपका नंबर यहाँ शो कर जाता है कि आपने कब कब कॉल किया है। तो इसीलिए सोच समझ के कॉल करिए, और जिन्होंने कॉल नहीं किया है उनको भी मौका दीजिए, उनके भी पसंद के गाने आप इंजॉय करिए।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून यार जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जोर समय की बात करूँ तो 3:22 हो चुके हैं और आप आर जरीना के साथ कनेक्ट है। हेलो फरमाई शो में, और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें आपके दिल की होती हैं, गाने वही जो आप सुनना चाहे। और आपसे यही कहना चाहेंगे, कभी कभी ज़िंदगी में ना, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी दोस्तों में मन मुटाव हो जाता है, कभी फैमिली वालों के साथ हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये 2026, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 आने वाला हो, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और शब्दों पर अपना बहुत कंट्रोल कहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोलिए। अगर आप एक बार बोल देंगे और आपके शब्द मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना कभी कभी गुस्से में, जो कि अगला सहन नहीं कर पाता है, बस उस पर आपने ध्यान देना है और बाकी तो आपकी लाइफ ऑलरेडी मज़ेदार हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं, किसी को बोलने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे शब्द ना बोल दें जो उनको अच्छा ना लगे। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से हो आप?
1: मैं मुरादाबाद लाइन पार से कार्तिक गुप्ता बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी कार्तिक, बताइए क्या गाना सुनना
1: चाहते? एक विलन मूवी से बंजारा सॉन्ग सुनना है।
0: ओके, क्या काम करते हो आप?
1: काम कुछ नहीं करता, मैं स्टडी करता हूँ।
0: अभी छुट्टियाँ चल रही है कॉलेज?
1: इलेवेंथ क्लास में हूँ, अभी छुट्टी चल रही है।
0: अच्छा, इलेवेंथ क्लास में हो, नानी के घर नहीं गए आप?
1: नानी के घर नहीं, हमारे परेज चल रहे हैं बालाजी के।
0: तो आपने तो कल भी कॉल किया था।
1: हाँ,
0: मुझे अब पता चला जब आपने परेज का नाम लिया ना, तो आपने कल भी कॉल किया था, तो आपको पता है ना कि वीक में सिर्फ एक ही बार कॉल कर सकते हैं।
1: अरे मुझे पता नहीं था, सॉरी, पहले ऐसा होता था ना रोज का, तो मैं पहले से सोच सुनता आ रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, अभी भी मैंने शो स्टार्ट करने से पहले बोला भी था कि अगर आपने इस वीक कॉल कर चुके हैं।
1: सॉरी सॉरी, तो मैंने अभी शो सुना नहीं था ना, इसलिए एक बार कॉल करा तो एक बार में लग गया था।
0: अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता चलता जब आपने बोला है कि हमें परेश चल रहा है, तो मैंने कल यहीं थी मैं, तो मैंने यही शब्द सुना था बस आपका।
1: अच्छा ठीक है,
0: ठीक है, आगे से आप ध्यान रखना। अभी बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
1: वो एक विलन मूवी से बंजारा सॉन्ग सुनना है।
0: चलो ठीक है,
1: ठीक।
0: तो श्रोताओं, हम आप सभी से विनम्र विनती यही करना चाहेंगे कि देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन्होंने कॉल कर दिया है कृपया करके वो कॉल ना करें, क्योंकि और भी जो नए लिसनर हैं उनको मौका मिलना चाहिए कॉल करने के लिए। तो कृपया करके आप उनको मौका दें, उनकी फरमाइश सुने, कि उनके फरमाइश भी और अच्छे होते हैं ना, जैसे आपके होते हैं कि हमें अच्छा गाना सुनना है, तो उनके भी होते हैं, तो उनको मौका दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा।

0: बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, एक बंजारे का घर, यानी कि जो इसके दो वर्जन, एक पुराना एक न्यू। और सच बताओ ये दोनों बड़े शानदार, बहुत ही प्यारे गाने हैं। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, जहां आप सभी के फरमाइश वाले गाने प्ले किए जाते हैं, यानी कि हेलो फरमाइश शो। और समय की बात करूँ तो 3:31 हो चुके हैं। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ
1: हेलो, संदीप
0: जी सर, क्या नाम है आपका?
1: गुप्ता नाम है मैडम। बढ़िया
0: जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: है मैम,
0: कहाँ से
1: काफी
0: बात कर
1: टाइम
0: रहे हैं
1: बाद
0: आप?
1: कॉल लगा मेरा।
0: अच्छा, काफ़ी टाइम बाद कॉल लगा आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं सर वैसे?
1: मैं मुरादाबाद टैक्सी स्टैंड।
0: ओके सर, तो बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, क्या काम करते हैं आप?
1: मैं ड्राइव करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ,
0: ओके ओके, तो अभी आप ऑन द वे हैं?
1: ऑन द वे गाजियाबाद में इस समय। मैम
0: ओके ओके सर, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनना था, तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे। जी
0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना है, और मुझे लगता है कि किसी खास के लिए गाना सुन रहे हैं आप
1: जी
0: ये। तो आप नाम लेना चाहेंगे?
1: नहीं, जिसके बस जिसके लिए सुनना चाहते हैं, अच्छा गाना है।
0: चलो जी, वो भी सुन रही होंगी शायद।
1: जी
0: चलो अच्छी बात है, चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके चलिए, बहुत खूबसूरत गाना है, और सच्ची में आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं ना, तो बस उसके लिए गाना सुन लीजिए, या फिर उसकी पसंद का जो भी उसको पसंद हो, काम करना, कुछ खाना, आप उसके लिए वो करो। देखो कैसे चुटकों में खुश हो जाती है, उसके चेहरे पर मुस्कान अलग ही आएगी। तो चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं। लेकिन गाने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक। रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B, बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, यानी कि जब एक से भले दो होते हैं अपने ज़िंदगी में, बहुत ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। और ज़िंदगी की जो नाव है ना, वो कभी अकेले नहीं चलती, इसीलिए हमें ज़िंदगी के नाव के लिए दो पहियों की ज़रूरत हो पड़ती पड़ती है। श्रोताओ, आप कनेक्ट है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, आप एंजॉय कर रहे हैं आरजे रीना के साथ। और शो की बात करूँ तो हेलो रिक्वेस्ट शो में हैं आप, जहाँ पर आप सभी के फेवरेट वाले गाने प्ले किए जाते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: आर बी सिंह।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद से। हाँ जी सर, बताइए क्या काम करते हैं आप?
1: जी सर, हमारी छोटी सी शॉप है, शॉप चलाते हैं
0: आप। सर, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम तो काम ही होता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम।
0: हाँ जी, तो बताइए आज की क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी हमारी फरमाइश है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है।
0: क्या बात है, लेकिन यही गाना क्यों?
1: जी
0: यही गाना आपको सुनना अच्छा लगता है?
1: जी
0: अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम।
0: हाँ सुनाइए।
1: दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है।
0: क्या बात है।
1: टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। किसी के साथ दूर तक जाकर तो देखो, किसी के साथ दूर तक जाकर तो देखो, अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है।
0: अरे वाह, क्या बात, क्या शानदार बात कही सर आपने। सच में, मतलब जो इस टाइम सुन रहे होंगे और जो अभी जिनके बीच में मन मुटाव हुआ होगा, वो जरूर सोचेंगे इस बारे में।
1: जी मैं तो कहता हूँ किसी के दिल में मन मुटाव रहे नहीं मैम।
0: मन मुटाव सर इन द सेंस कि ये है कि जब आप लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें, गलतियां तो होती रहती है सर, है ना,
1: जी
0: लेकिन उन गलतियों से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उनका सामना
1: जी
0: करना चाहिए,
1: जी
0: है ना।
1: जी जी
0: तो
1: और अब अभी आपने प्रोग्राम सुनवाया था ना पर्यावरण पे, अभी आधे घंटे पहले,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: वो भी मैडम बहुत अच्छा लगा।
0: चलो थैंक यू सो मच सर कि आपको अच्छा लगा।
1: जी
0: और बताइए सर, आपको रेडियो सुनना कैसा लगता है?
1: जी बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन
1: और
0: कौन से
1: आपके,
0: शो सुनते हैं आप?
1: अरे पहले तो आप ये सुनिए, आपके जो रेडियो स्टेशन है 3 साल और 2 महीने हो गए।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब लगता है मेरे को, मतलब आपको याद है।
1: और जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना आपका चैनल, उस दिन 23 मार्च थर्सडे था, गुरुवार।
0: ओह, तो मतलब आपको सारा याद है।
1: ये हम तो गलत ऐसे समझ लो, बस हवा और बोले तो बस क्या कहें, जैसे बस कुछ कह नहीं सकते, सब नहीं है।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है सर, तो हम आपका ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ओके, नमस्ते।
0: ओके जी, नमस्ते सर। तो चलिए, बहुत ही प्यारा है, दुश्मन न करे जो दोस्त ने काम किया है, ये गाना एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस है, तो बच के रहिए और पानी पीते रहिए, क्योंकि पानी छाछ पीना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस गर्मी से बच सके। चलिए फिलहाल गाना

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 3:49 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी कॉल करते रहिए और अपना पसंद के गाने सुनते रहिए, क्योंकि अभी आपने बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया है, दुश्मन ना करे काम जो दोस्त ने किया है। यानी कि कुछ गाने बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, अमित कुमार जी की आवाज़ में ये गाना आपने एंजॉय किया है। तो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप सब?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: आनंद जी, खुशी जी, सब ठीक हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब बहुत बढ़िया है।
1: बहुत अच्छा शो चलता है मैम, सुबह से लेकर 9 बजे से शाम के 7 बजे तक।
0: 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक
1: हमारा एफएम चलता रहता है मैम।
0: अच्छा, आपका चलता रहता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक?
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है मैम फिरोज खान सैफी।
0: ओके, मुरादाबाद से?
1: जी, वीकनपुर कांट रोड मुरादाबाद।
0: ओके, तो बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मैं एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, राजेंद्र कुमार जी का, रेखा जी का, नूतन जी का, साजन की सहेली मूवी से है, जिसके लिए सबको छोड़ा
0: उसी ने हमको
1: मेरे
0: छोड़ा,
1: दिल को तोड़ा।
0: और यही ये देखिए, कहते हैं ना कि जिससे मैं प्यार करूं वो भी किसी और से प्यार करे, और मैं चाहूं कि वो भी किसी और से प्यार करे।
1: किसी और से प्यार करे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे।
0: हाँ सर, सिलसिला चलता रहा ना तो ना जाने कितनों के दिल टूट जाएंगे।
1: कितनों के दिल टूट जाएंगे मैम, हकीकत।
0: ठीक है जी, किसी का नाम लेना
1: भी चाहिए मैम, तभी तो पता चलता है जिंदगी का।
0: बिल्कुल,
1: वरना लोग
0: बिल्कुल।
1: खोए रहते हैं अपनी लाइफ में।
0: देखिए सर, कोई भी अगर हमारे साथ कोई गलती होती है तो हमें उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि आपको वहां से कुछ सीखने को मिल रहा है,
1: सीखने को मिलता है। जी मैम,
0: है ना? और जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और इसकी अहमियत भी नहीं होती सर। जो चीज आप,
1: बिल्कुल मैं भी यही बात रखता हूँ, जो भी जहीं कोई बात आती है तो कोई अपनी मतलब कहानी सुनाता है, कोई बात बताता है, तो मैं उससे ये कहता हूँ भाई अगला कदम देखो, क्या पता हमें क्या सुधार आया है,
0: क्या
1: पीछे को भूल जाओ,
0: और क्या पता उससे बेटर हो आपकी लाइफ में।
1: जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल।
0: हाँ जी, तो आप किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: मैम मेरे दोस्तों को तो मैंने बहुत हो गया एफएम डाउनलोड करा दिया, अब ये नहीं पता बस सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं।
0: चलिए शुक्रिया कि आपने रेडियो
1: सुन रहे हैं सभी के लिए है।
0: अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एफएम डाउनलोड करवाए हैं।
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम जब अपने यहाँ का कोई भी चीज आती है ना, आप जिला मुरादाबाद का नाम सुनते हैं तो आप ना मुरादाबाद से ऐसा लगता है ना अपना है बिल्कुल।
0: सर आपका ही है ये,
1: मुरादाबाद की फोटो दिखाया था। हाँ, अपने ही तो बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आप सबके बिना अधूरा है ये।
1: जी जी मैम,
0: हाँ जी,
1: इसीलिए तो हम भी बाहर नहीं गए काम करने, अपना काम बिजनेस यही चला रखा है अपना हमने भी।
0: अच्छा, मुरादाबाद में काम करते
1: जाएंगे तो क्या होगा, अपना ही कराएंगे, अपने देश में करेंगे, अपने जिले में करेंगे
0: और अपने फैमिली वालों के पास रहेंगे।
1: जी मैम बिल्कुल,
0: सबसे बड़ी बात है सर फैमिली वालों के साथ रहना
1: जी,
0: क्योंकि वो
1: मैं अपने आप को बहुत खुद किस्मत मानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही यहीं पे रहा हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ काम करने के हिसाब से, या मतलब पढ़ाई भी करी तो मैंने यहीं से करी है सब।
0: अच्छा, मुरादाबाद से
1: करी तो यहीं पे। हाँ, पापा का बिजनेस यही संभाल लिया।
0: ओके ओके, अच्छी बात है सर कि फैमिली के बिजनेस आप संभाल रहे हो।
1: जी मैम,
0: चलिए सर, हम आप
1: सब चीज अच्छी है मैम, माशाल्लाह ऊपर वाले के मुझे आपके दुआओं से, दो बेटियां भी हैं प्यारी सी।
0: कैसी हैं वे?
1: बहुत अच्छी हैं, नानी कर रही है छुट्टियों में।
0: आपका मन नहीं लग रहा होगा,
1: ये प्लान चल रहा है सबका।
0: आपका मन नहीं लग रहा होगा बच्चों के बिना घर, मतलब
1: मैम घर जाके तो आपको बताइए सूना सूना हो जाता है, बिल्कुल खाली घर है, मम्मी पापा हम तीन लोग ही हैं घर पर।
0: हाँ, बच्चों से घर की रौनक बनी रहती है
1: जी,
0: चाहे वो लड़े बैठे रहे, मतलब कुछ भी करे।
1: अच्छा मैम, तब लगता है जब बच्चे शाम को ना फोन करते हैं पापा घर आओगे ना तो एक आइसक्रीम जरूर लेगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और अच्छा लगता है जब बच्चों के लिए आप कुछ लेकर जाते, अंदर से आपको खुशी मिलती है।
1: जी मैम,
0: हाँ जी, हाँ जी सर,
1: कुछ चीज खाते हुए भी सोचना पड़ता है कि पहले नहीं यहाँ नहीं खा रहे, घर ही लेके जा रहे हैं बच्चों के साथ खाएंगे।
0: सर ये मुझे लगता है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे आ जाती है इंसान के अंदर जैसे जैसे बड़े होते हैं, क्योंकि बचपन में हम सभी
1: शादी के बाद नहीं आती है, जब बच्चे हो जाते हैं तब आती है। हमें अपना बचपन वहां दिखाई देता ना, तब आती है वो समझ, उससे पहले नहीं आती। मैंने भी देखा है ये शादी के बाद इतनी समझ नहीं आ पाती है, इतनी चीज हम सोच नहीं पाते, बट जब हमारे बच्चे हो जाते हैं ना, जब हमसे वो जिद करते हैं, कोई चीज मांगते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ ये लाइफ कुछ अच्छी है और हमें अपने आप ऑटोमेटिक समझ आने लगती है।
0: तो इससे हमें यही ना पता चलता है सर, अब जब तक शादी नहीं होती है पेरेंट्स हमें समझाते हैं कुछ, मतलब कुछ भी समझाते तो हम उस टाइम समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो
1: नहीं ऐसा
0: बातें
1: ना
0: खुद
1: मैम, अब हम लाइफ में कुछ ज्यादा सीख गए हैं ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों।
0: हाँ वही है ना सर, जब
1: कुछ
0: तक
1: बोलते
0: आप
1: तो
0: उस चीज के आगे नहीं आए हो तब तक आप नहीं समझ पाओगे।
1: मैं तो सबसे मैम ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम भी ना भाई घर पे रहो, अपने माँ बाप के साथ में कम से कम 2 घंटे तो व्यतीत करो ऐसे कि माँ बाप कुछ अच्छी बातें बताएंगे, उनके साथ बैठ के अपना जो भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी बात करनी हो, पहले अपने माँ बाप से बात करो, उनको बताओ, उनसे पूछो कि वो सही है या गलत है, अपने आप डिसीजन मत लो।
0: बहुत अच्छी बात है सर। चलिए सर, उम्मीद करती हूँ कि सभी की सोच मतलब ऐसी रहे और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं।
1: जी मैम बहुत
0: चलिए सर, हम आपको ये गाना
1: ठीक है मैम,
0: सुनवाते हैं,
1: बहुत
0: ठीक
1: बहुत थैंक यू आपका, बहुत तक दिया आपने।
0: जैसे बातें होती है ना, तो बातें पता नहीं चलता कब कितने घंटे कितने सेकंड
1: एक
0: निकल जाए, पता नहीं चलता है।
1: मैंने आपका जो एडवर्टाइज आती है ना, एक वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो ये जो सॉरी मेरी याद नहीं आ रही है, ड्राइविंग के हिसाब से जो करते हैं ना, मतलब हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए बताते हैं ना आप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना मैम, तो जैसे मुझे देखता हूँ मैं बाइक पे, जैसे बहुत से बंदे जाते हैं और हेलमेट जो है ना हाथ में रख लेते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो
0: वो तो मैं
1: उनसे भी मैं वो यही बोल देता हूँ, रोक के गाड़ी बुलवाता हूँ, मैं पूछता हूँ उनसे, मैं यही कहता हूँ कि भाई देखो ये अपनी सेफ्टी के लिए है, ना कि चलान से बचाने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने शो में, जैसे मैं मेरा तो इवनिंग शो है सर, तो मैं तो मतलब हर बार मतलब एक लिंक तो मेरा ट्रैफिक के ऊपर आता ही आता है।
1: जी मैम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जब रोड पर चलता हूँ ना, मैं किसी को यही बात जरूर बताता हूँ रोकते हुए, मुझे खुद अजीब लगता है देख के, हेलमेट हाथ में रख लेते हैं गाड़ी चला रहे हैं।
0: सर वो तो गलत बात है ना, मान लीजिए कुछ हो गया तो वो सरकार तो आपको कुछ नहीं दे उस टाइम कह रही है ना, सरकार ना आपसे कुछ ले रही है ना कुछ देने के लिए कह रही है,
1: जी मैम जी
0: सिर्फ आपको यही कहती है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट सीट बेल्ट जरूर लगा कर रखें,
1: मैम
0: वरना आजकल किसको किसकी पड़ी है सर, किसी को भी नहीं है।
1: नहीं है मैम, रोड पर आप देखो आपके रोड पर मुश्किल से कोई आता है, छोड़ के चले जाते हैं लोग,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन
0: कुछ
1: मैं तो ऊपर वाले की दुआ, मगर अपने मुंह से तारीफ करनी अच्छी नहीं लगती है, बस ऊपर वाला जानता है, हम तो यहाँ हमारे ये रोड है ना, ये हमारा हरिद्वार रोड है, घाट रोड ये,
0: अच्छा,
1: हाँ यहाँ से मतलब जो है मैं तो बस कोई दिन खाली जाता है, मैं बस ऊपर वाले से दुआ करते रहता हूँ, बस हर इंसान जब घर से निकले तो अपने सेफ्टी से अपने घर पहुंच जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, और जल्दबाजी ना करें क्योंकि शाम अपनी होती है और घर ही जाना होता है हमें।
1: एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तो सब सुन रहे होंगे मेरी बात, तो भाई अपने बच्चों को बाइक दो तो बहुत सोच समझ के दो,
0: और 18 साल से पहले ना दो।
1: ना दो बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि वो बच्चे जो ना जिद करके तीन तीन को घुमाते हैं बाइक पे, मैं देखते रहता हूँ मैं, मेरे सामने यहाँ पर तीन
0: और सर
1: तीन बंदे होते हैं छोटे छोटे और बहुत तेज स्पीड से जाते हैं।
0: तो आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, उनको लगता है कि भैया हमसे ज्यादा कोई बाइक और तेज चला ही नहीं सकता है,
1: जी मैम
0: क्योंकि उनको पहली फर्स्ट जोश चढ़ा होता है ना।
1: जी मैम, बस ये एक ट्रक के पीछे ट्रकों के पीछे बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी रहती है, वो पढ़ लिया करें ना लोग, उसको तो फिर कोई दिक्कत ना आए।
0: हर दीवार पे लिखा होता है सर।
1: जी मैम ठीक है मैम, शुक्रिया बहुत बहुत
0: चलिए जी,
1: बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं तो आज एफएम में बात कर रहा हूँ
0: जो बाहर सुन रहे होंगे हमारी बातें सुनकर हंस रहे होंगे और कह रहे होंगे यार अच्छी बातें जानकारी मिल
1: ये तो सॉन्ग ही नहीं सुना रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं,
0: रही है
1: लेकिन भाई फिर भी ध्यान रखना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर,
1: ओके फिर
0: थैंक यू सो
1: आप भी
0: मच
1: अपना सेफ्टी से जाया करो भाई।
0: सर, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं ही ऊपर ही रहती हूँ
1: ठीक है बहुत बढ़िया मैम, फिर आपका ठीक है
0: मैं आपको ऑल टाइम मिल जाऊंगी, हर रात को दिन को कभी भी एनी टाइम आप
1: नहीं मैम, जिस दिन आपके मुरादाबाद आऊंगा ना पूरा टाइम निकाल के आऊंगा आपके शो में मैम, 5-10 मिनट तो दे के आऊंगा।
0: ठीक है, ठीक जी, आइए, मोस्ट वेलकम है आपका।
1: जी मैम
0: चलिए
1: ओके
0: सर,
1: मैम
0: ओके।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए श्रोताओं, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आप ऑन द वे हैं तो हेलमेट सीट बेल्ट जरूर पहनिए, क्योंकि इसमें हमारी सेफ्टी है, को किसी को किसी के लिए नहीं पड़ी होती कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस सब अपने अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, कल को कुछ हो भी जाएगा ना तो उस टाइम नहीं बोलेंगे कि ओ तेरे को चोट लग गई है, जब आप ठीक हो जाएंगे तब अब से बोलेंगे यार तूने उस टाइम बताया क्यों नहीं, अरे मैं तेरे साथ रहता तो एक बार बता के तो बोल, तू बोलता तो सही। तो उस टाइम आपको लोग दिलासे देने के लिए आते हैं, इसीलिए खुद की रक्षा खुद करे। और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कार्ड रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई।

0: यानी कि 4:07 हो चुके श्रोताओं, यानी कि हमारे पास पूरा अभी 1 घंटा है, तो आप आसानी से और आराम से कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9837896896 पर आपने कॉल करना है और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय करना है। तो चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: और सिंह नाम है, पीतमहरी मोहल्ला से बात कर रहा था।
0: ओके सर, वहाँ का वेदर कैसा है सर?
1: मौसम जैसा आपके क्रम वैसे यहाँ पर,
0: हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है।
1: बस वैसा ही है, कोई अलग थोड़ी है, ज्यादा थोड़ी है आप यहाँ से 4-5 किलोमीटर।
0: अच्छा, तो क्या मतलब कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम गाना बता रहा था, मैंने एक गाना राजस्थानी सॉन्ग बन्ना रे भागम झूला डालियो।
0: क्या बात है जी, और मौसम भी अब ऐसे ही आने वाला है ना, झूला डालने वाला। कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: बस मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिलेगी, हम क्या हो,
0: किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: नहीं मैं किसी नाम नहीं चाहता।
0: चलिए सर, आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है,
0: नमस्कार जी, चलिए गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी, बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, बन्ना रे बागों में झूला डाला। यानी कि ये मूवी की बात करूँ तो गंगा की कसम मूवी है ये, और ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 1999 में। और म्यूजिक की बात करूँ तो बप्पी लहरी जो कि यानी कि डीजे सिंगर कहलाते हैं ये। और श्रोताओं आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 4:00 यानी कि 15 मिनट हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है हेलो फरमाइश शो में। तो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो हेलो नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसी हो?
1: बस बढ़िया हूँ।
0: चलो अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। क्या नाम है आपका?
1: अलीना।
0: अलीना जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? भीड़ में तन्हाई में। लेकिन ये गाना क्यों सुनना चाहती है आप भीड़ में तन्हाई में?
1: ये हमारे फ्रेंड की चॉइस है।
0: अच्छा, फ्रेंड की चॉइस है आपकी, आपकी नहीं है ये?
1: नहीं, फ्रेंड की है।
0: मतलब आप भीड़ में नहीं जाना चाहती है ना?
1: हम नहीं जाते, हम फ्रेंड जाना चाहती है।
0: अच्छा अच्छा, वो भीड़ में जाना चाहती है। ओके जी, आप भीड़ से दूर क्यों भागना चाहती है फिर?
1: उनका मन होगा जाने का।
0: नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप भीड़ से दूर क्यों भागना चाहती है? अच्छा, शांत रहना चाहते हैं। शादी के बाद तो भीड़ बढ़ जाती है, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, सबकी फरमाइश सुनना,
1: दिल करता शांत रहो।
0: लेकिन बच्चे शांत नहीं रहने देते ना?
1: बच्चे शांत नहीं रहने देते।
0: तो बताओ
1: आप भीड़ में जाना चाह रही
0: है? अच्छा अच्छा, वो भीड़ में अब जाना चाह रही है ना, भीड़ में आ चुकी हो जब शांति ढूंढ रही हो आप।
1: जी।
0: चलिए अच्छी बात है। आपकी फ्रेंड का क्या नाम है जो गाना सुनना चाहती हैं?
1: अनाया।
0: अनाया, ओ अनाया जी ने क्यों नहीं बात करा? पर उनकी आवाज तो सुनना चाहिए था ना मुझे।
1: अनाया शर्मा रही
0: है। ओ तो भीड़ में भी जाएंगे और शर्माएंगे भी, जो हो कमाल की बात है। चलिए जी, हम आपको ये फिलहाल गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके जी, ओके। चलिए, कभी कभी फ्रेंड की खुशी के लिए ना गाना सुन लेना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। और जब दोस्त एक साथ होते हैं तो बातें बड़ी लाजवाब हो जाती है, यानी कि जब बचपन वाली दोस्ती एक साथ होती है ना, तो आप जब मिलते हो ना तो सोचना नहीं पड़ता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बिना सोचे समझे बोलो, वो वाली दोस्ती बड़ा मस्त होता है। चलिए।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है कि मुझे तुम याद आते हो भीड़ में तन्हाई में। सच बताओ कुछ गाने ना बड़े मज़ेदार होते हैं और ये गाना आपने एंजॉय किया है उदित नारायण जी की आवाज़ में, श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना। मूवी की बात करें तो तुमसा नहीं देखा, हाय हाय क्या बात है, तुमसा नहीं देखा। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस मूवी के गाने इतने शानदार हो, सोचिए मूवी कितना अच्छा होगा। फाइनली आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 4:23 हो चुके हैं और हेलो फरमाइश शो एंजॉय कर रहे हैं आप आर्जरीना के साथ। तो आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी में अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर जाते हैं छतरी लेकर जाइए, बाइक पर है तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमें ना अपनी रक्षा खुद करना है, कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा करने के लिए। इसीलिए आप सेफ रहेंगे तभी कल एंजॉय कर पाएंगे, फाइन है ना। सो चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ जैसे मैंने बोला कि चलिए उनसे बात करते हैं, उन्होंने फ़ोन एकदम कट कर दिया है। तो देखिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर कॉल करते हैं तो कॉल आपने नहीं कट करनी है, अदरवाइज आप कल मतलब कॉल कट कर देंगे और फिर मुझे बोलते कि मैडम हमारा गाना प्ले नहीं हुआ है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कॉल भी कर रहे हैं और कॉल भी कट कर दे रहे हैं, तो गाना तो कैसे प्ले हो पाएगा। लेकिन मैं एक अपने पसंद के आपको गाना सुनवाती हूँ, ठीक है जी। और ये गाना ना बड़ा ही खूबसूरत है, हम जिंदगी में ना कितने झूठ बोलते हैं लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो ये गाना मैं आपको सुनाऊंगी, फिलहाल के लिए आप ट्यूनिंग रखिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड हिल 10th जून, TNC अप्लाई।
5: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
6: प्रकृति से खुशियों की लहर।
7: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
8: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
9: एक बुलबुल बुलबुल बोली सुन बाबुल, एक बुल

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। हेलो मुरा, हेलो फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:33 हो चुके हैं और आपने बहुत ही प्यारा गाना इंजॉय किया है, दिल में है प्यार तेरे होठों पर गितवा। यानी कि सच बताओ, ये गाना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से बहुत ज़्यादा। सो चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और कहाँ से कनेक्ट होते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, कहाँ से हैं?
1: मैं आनंद भूते, बड़ौदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
0: महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं आप, कैसा है वहाँ का वेदर?
1: एकदम ठीक बहन जी, बहुत खुश रहता हूँ, सदाबहार रहता हूँ और आप भी सदाबहार रहिए। अपने श्रोता मित्रों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सदाबहार रहे,
0: सदाबहार रहे।
1: हाँ, सदाबहार यानी एवरग्रीन, खुश रहे
0: यानी कि सदा से बाहर रहे।
1: सदाबहार रहने से सेहत की सेहत अच्छा रहता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि सेहत अच्छा रहता है, मतलब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं लेने का, है ना?
1: टेंशन लेना पड़ता है लेकिन इतना ही लेना नहीं पड़ता कि भाई अपनी तबीयत खराब हो जाए।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब बताइए जी, कौन से गाना सुनेंगे आज आप?
1: गाना ऐसा है, हिंदी फिल्म का गाना है, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे।
0: नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे।
1: कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम।
0: क्या बात है जी, छोड़ना भी नहीं चाहिए सर, है ना?
1: और ये गीत मैंने क्यों चुना बहन जी, आज प्रसिद्ध गीतकार यानी राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिन है 6 जून। तो वो तो अपने में रही रहे लेकिन उसकी जन्म तारीख है 6 जून, इसलिए मैंने ये गीत सुना है।
0: वो तो सर देखिए, कोई रहे ना रहे लेकिन इतने अच्छे सिंगर, उनकी आवाजें, जो उनके सदाबहार गाने हैं वो तो सदा सदा के लिए हमारे दिल में रहेंगे ना।
1: और उसके जन्मदिन पर बहुत याद आती है यानी।
0: अच्छा अच्छा उनके जन्मदिन पर बहुत सही बात है सर, याद तो आती है चाहे जन्मदिन हो चाहे कुछ भी हो।
1: और मैं मुरादाबाद से कैसे जुड़ा, मैं थोड़ी बोलता हूँ।
0: अच्छा कैसे जुड़े आप बताइए जरा।
1: जितने महाराष्ट्र से भाई मुरादाबाद कैसे आए तुम? हम पिछले मे महीने में, मैं 2025 के मे महीने में मैं बद्रीनाथ से इधर महाराष्ट्र में आ रहा था। तो मैं हमारी गाड़ी हरिद्वार में खड़ी थी यानी महाराष्ट्र की।
0: ओके ओके।
1: हरिद्वार में हम महाराष्ट्र की इधर चल पड़े तो मुझे एक बस दिखी, बस पर बोर्ड था हरिद्वार से मुरादाबाद, ऐसा बोर्ड दिखा मेरे को।
0: अच्छा अच्छा,
1: तुम्हारी यूपी की बस थी, हो यूपी महामंडल की यानी सरकारी बस थी। तो उस पर बोर्ड लिखा था हरिद्वार से मुरादाबाद। मैंने घर आकर फिर नक्शा देखा कि भाई मुरादाबाद किधर है पहले देखेंगे।
0: अच्छा अच्छा, आपने सीधा मन बना लिया कि मुरादाबाद देखना है अब तो हमें, है ना?
1: आएंगे कभी हरिद्वार आए तो मुरादाबाद आएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है।
1: थैंक यू बहन जी।
0: तो सर एक मिनट, मतलब अरे सर वो तो बस पे लिखा हुआ था ना मुरादाबाद, तो ऐप के बारे में मतलब रेडियो के बारे में कैसे पता लगा आपको?
1: रेडियो के बारे में पता, वही मैं बात बोलने था, फिर मैंने मुरादाबाद हमारे जो महाराष्ट्र के जो ग्रुप अभी मालूम है कि रेडियो होने की वजह से ग्रुप बन गए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: कि हमारे महाराष्ट्र का जो अकोला ग्रुप है, ये तो अकोला जिले का गाँव है। मैंने एक बार मोबाइल पर देखा, दूसरे मेरे दोस्त के मोबाइल पर देखा तो वहाँ मुरादाबाद अपना रेडियो मुरादाबाद का फोन नंबर था। मैंने बोला चलो इधर मुरादाबाद, मैंने वैसा भी बस में बोर्ड देखा जिले का गाँव है और अपने रेडियो का फोन नंबर मिल गया, इसलिए मैंने पहली, ये मेरा तीसरा चौथा फोन है आपके रेडियो पर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए जी बहुत अच्छी बात है कि आप महाराष्ट्र से भी हमें सुनते हैं और कॉल करते रहते हैं। चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: हमारे रेडियो श्रोता जो लोग है, हमारे बड़ौदा ग्रुप के बहन जी, मुरलीधर जी ढोले है, शरद जी वानखड़े है, अशोक देशमुख है, संतोष भाई काटे है, और आप भी हमारे साथ इस पुराने गीत का यानी अच्छे गीत का आनंद लीजिए।
0: चलिए सर, हम भी सदा बहार गाने का आनंद लेते हैं, ठीक है?
1: ठीक है
0: बहन जी। ओके जी, ओके। चलिए श्रोताओं, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप ऑन द वे हो, गाड़ी में हो, तभी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं, बल्कि इंडिया के किसी भी कोने से आप हमारा रेडियो सुन सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाना है या फिर एप्पल का फोन है तो ऐप स्टोर पर जाना है आपने, और वहां पर आपने डाउनलोड करना है FM मुरादाबाद 89.6। आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा, उसको आपने डाउनलोड करना है और फिर आप रेडियो कहीं से भी हमें सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो कभी आपको ये नहीं बोलता कि मेरे लिए समय निकालो, तभी मैं तुम्हें अच्छे से तुम मुझे सुन पाओगे, बल्कि रेडियो एक ऐसा है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप रेडियो सुन सकते हो। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आर्जरीना के साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। हेलो मुरादा, हेलो फरमाइश शो में श्रोताओं। सो आपने क्या करना है, देखिए अब समय की बात करूँ तो 4:44 हो चुके हैं और आपने बिना सोचे समझे हमें कॉल करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, यानी कि 15 बाकी है और इस 15 में आप कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसके कॉल के बाद लास्ट लकी कॉलर देखते हैं कि वो हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कल संडे हैं आपको भी पता है, और संडे को ये हमारा शो हेलो फरमाइश नहीं आता है। तो चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
7: हेलो,
6: हाँ जी,
7: नमस्कार।
6: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है मैडम, आप कैसी हैं?
6: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
7: जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खैन से असली काम सिद्दीकी बात कर रहा हूँ मैडम।
6: और बताइए सिद्दीकी जी, सब फैमिली में बढ़िया है?
7: सब बढ़िया है सब।
6: चलो अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। गाना बता दो, आप कौन सा गाना सुनोगे?
7: फिल्म का नाम है धर्मवीर और गाने जो बोला है वो मेरी महबूबा महबूबा तुझे जाना है।
6: ओहो, किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं?
7: जैसे बड़े भाई साहब है, टोपी गामा सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश।
6: नहीं नहीं, हमने बोला किसके लिए गाना सुनना चाहते हैं?
7: ये अपने लिए गाना सुनना है, श्रोताओं के लिए गाना सुनवाना है।
6: मैडम के लिए नहीं सुनेंगे आप ये गाना?
7: जी मैडम भी सुनेंगी।
6: मैं मुझे लगता है कि मैडम मामा के घर चली गई है इसीलिए गाना सुन रहे हैं आप।
7: नहीं नहीं नहीं
6: गर्मी की छुट्टियां चल रही है सर। चलिए सर, हाँ जी,
7: सुनने वालों का नाम
6: ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए।
7: बड़े भाई साहब, तौफीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अजीत ससाना, राजवीर सिंह यादव, यूनुस खान।
6: ओके ओके सर, आप हम गाना सुनवाते हैं। ओके ओके, मुझे लगता है कि आप सांस नहीं लेते क्या बोलते समय?
7: जी नाम तो मैं इतने ले लूंगा मैडम के बस कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं नाम कम ही बोलता हूँ।
6: हाँ चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं मतलब।
7: ठीक है मैडम,
6: ठीक है जी, चलिए गाना एंजॉय करते हैं। ओ मेरी महबूबा, भाई जो भी जिनके भी मैडम घर चली गई है ना अपने घर, क्योंकि विंटर की छुट्टियां पड़ गई है और बच्चों की एक ही फरमाइश होती है, मामा के घर चलो, कहीं घूमने चलो, क्योंकि ये छुट्टी एक ऐसी छुट्टी, सिर्फ ये छुट्टी के लिए नहीं होती बल्कि अपने फैमिली के लिए टाइम देने वाला ये समय होता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, घूमिए, मस्त रहिए और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, देखते हैं लास्ट लगी कॉलर कौन कनेक्ट होती है।

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है, ओ मेरी महबूबा महबूबा। अच्छा ये बताइए कि आपने ये मूवी कितनी बार देखी है? मैंने तो कम से कम ये मूवी जब पापा देखते थे तो मैं 2-3 बार ये मूवी देख चुकी हूँ। बहुत प्यारी मूवी है। धर्मेंद्र पाल जी के जितने भी मूवी है ना, सच बताओ बहुत प्यारी मूवी है। धर्मवीर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तो हर गाने बड़े खूबसूरत लगते हैं। और आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है हेलो फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 4:51 हो चुके श्रोताओं, और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब रीना लेने वाली है यहाँ से फुर यानी कि जाने की इजाजत। हम आपको मिलने वाले हैं रात को 9 बजे, जहाँ ढेर सारी बातें करेंगे। आपके दिल में भी है कोई बातें, शेरो एंड शायरिया, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बातें होती है दिल की, बातें दिल से। चलिए लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अजय कुमार मैम, चालीखंबे जिला मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ मैम।
0: ओके जी, मुरादाबाद से है, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं पढ़ाई करता हूँ और अपना पेंट का भी काम करता हूँ जी।
0: ओके, पेंट का काम करते हैं आप?
1: जी मैम
0: ओके जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते करते भी आप अपना काम करते हैं, यानी कि खुद का खर्चा आप खुद ही निकाल लेते हैं,
1: जी मैम
0: ये
1: कोशिश करो अपना।
0: चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम आज ना सॉन्ग सुनवा दीजिए, नादान सा रूप है तेरा, न बन के प्रेम था तेरा, ले जाऊंगा तुझको दुनिया देखेगी।
0: ओहो, किसके लिए गाना सुन रहे हैं आप? ये किसको लेके जाना है आपको?
1: मैम मैम लेके तो किसी को नहीं जाना है, पर आप लोगों सबको ही सुनवाना है जितने सुन रहे हैं सुबह।
0: देखिए हमें मत उड़ा के ले जाइएगा सर।
1: अरे नहीं मतलब मैं वाणी की बात नहीं कर रहा, मैं ना सुनवाने की बात कर रहा हूँ।
0: डोंट माइंड सर, जस्ट किडिंग। क्योंकि हंसी मजाक तो चलती रहती है।
1: जी मैम, हंसी मजाक नहीं हुई तो मैम कैसे टाइम कटेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। तो किसी के नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ मैम नाम लेना चाहता हूँ। हमारे साथ सुदेश है, सुदेश के साथ और डीजे के साथ और हमारे भाई बड़े मुकेश।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना।
1: जितने सुनता सुनने वाले उनके साथ सुना आपके साथ।
0: चलिए आप लास्ट लकी कॉलर बने, कैसा लग रहा है आपको?
1: मैम बहुत अच्छा लगा, मैंने तो काफी कहीं से ट्राई भी कर रहा था, अगर
0: उम्मीद थी
1: लगी
0: आपको कि हमारा कॉल लग जाएगा।
1: मैम पक्की उम्मीद रहती है मुझे तो।
0: चलिए, जिसने ये सोच लिया ना कि भैया उम्मीद है, तो उसकी कॉल डेफिनेटली लग जाती है।
1: मैं जब भी फोन करता हूँ तो जरूर लगता है मेरे को तो।
0: क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ आप कॉल करते हैं ना, इसलिए लग जाती है।
1: जी मैम हिम्मत नहीं हारी मैम हमने।
0: अरे अरे क्या बात है, वही तो सक्सेस होते हैं सर, जो हिम्मत नहीं हारते हैं।
1: जी मैम जी
0: चलिए जी, आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी थैंक यू मैम।
0: ओके ओके, चलिए श्रोताओं अब हम लेते हैं ऐसे जाने की इजाजत। बाय, टाटा, टेक केयर। और आप भी अपना ध्यान रखिए। फिलहाल टेम्परेचर की बात करूँ तो 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि देखिए 5 बजने वाले हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी है, लेकिन बाहर जाकर देख रहे हैं तो लग रहा है कि भैया भरी दोपहरी वाली फीलिंग आ रही है इसमें, है ना? लेकिन गर्मी है, क्या कर सकते हैं, भगवान जी रहम बरसा दीजिए हमारे ऊपर, बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल के लिए आज 6 जून को भी बारिश बता रखी है बहुत, यूपी के 70 जिलों में यानी कि बारिश आने की संभावना है, और आंधी तूफान यानी कि 60, 70, 80 की स्पीड में है। तो आप सभी से यही विनम्र विनती है कि आप बाहर जाए तो खुले एरिया में जाने से बचें जब आंधी आती है, ताकि कोई भी छोटी मोटी चीज़ें उड़कर आपको चोट ना लगे। और ऑन द वे है तो हेलमेट सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है जी, बाय बाय।

0: तो डर समझ रहा है नादा, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन

0: लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है।

0: वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
3: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
1: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं।
0: हाँ,
1: और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
0: हाँ जी।
1: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
0: लेकिन सर आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
0: तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
1: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है, और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
0: बिल्कुल। सो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
1: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है। तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
0: बिल्कुल सर।
1: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
1: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
0: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
1: ठीक है।
0: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी कई काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। इट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी, हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
0: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
1: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ऐसा कुछ उनको एक
0: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th हाँ। तक तो मतलब सेम होती थी सर।
1: बिल्कुल।
0: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
1: हम भी अपने सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी।
0: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
1: बिल्कुल, गाइडेंस मिल जाती थी।
0: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
1: हर साल समझूंगी। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल कंफ्यूज
1: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
0: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
1: देखिए, कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
0: खत्म
1: हो जाती है। वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: है ना, तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: है ना, जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो ऑब्वियस है वो आगे चल
0: आगे भी बढ़ेगा,
1: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस भी बन सकता है।
0: सर, तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी हेल्प नियम कुछ?
1: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
0: जी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
3: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: तो श्रोताओ, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
1: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
0: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
1: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेल्फ हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
0: करेक्ट
1: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती,
0: बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
1: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए, एडमिशन।
0: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
1: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है, बड़े होके कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित तौर

0: ये कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
1: करेक्ट।
0: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोगों से मजाक में उड़ा
1: मजाक
0: देते
1: में उड़ाते
0: लेकिन
1: हैं।
0: ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा करेक्ट, अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करें।
1: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ।
0: हाँ। पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है और बच्चा घर पे डर के माता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते
1: हैं। ये
0: ना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
1: करेक्ट करेक्ट
0: है ना, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आप को उससे फ्रेंडली एटमॉस्फियर रखना है एकदम।
1: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने टीना।
1: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
0: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है। लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको। लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चीजें बैठती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें।
1: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दे। बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
1: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है। वो छोटा है, अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
0: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है।
1: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
0: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
0: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने, तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहां से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का रूप,
0: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर, हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओ, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते, हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
4: प्रकृति से खुशियों की लहर।
5: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूँ भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
0: जिसका
2: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए आपका

0: प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए, और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
1: बहुत जरूरी है।
0: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पे हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
1: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर।
0: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं, और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है। शायद अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
0: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
1: आई थिंक
0: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
1: क्या बात है।
0: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
1: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीछे,
0: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
1: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
0: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम हर
1: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
0: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है, गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
2: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
1: ओके लिटिगेशन, ठीक है, कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
0: देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
1: ओके
0: ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
1: करेक्ट। अच्छा जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
0: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
1: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर,
0: PIL,
1: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
1: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
0: देखिए जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
1: ठीक है,
0: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
1: ओके मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
0: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
1: करेक्ट,
0: उसको बैठ के
1: समझौता किया जाए, बेसिकली
0: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है, तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाव पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
1: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
0: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है, तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
1: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
2: जी। हाँ हाँ बिल्कुल।
1: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
0: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
1: हाँ ठीक है,
0: सुनी होगी ना?
1: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
0: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला पब्लिक जनहित,
1: करेक्ट
0: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका।
1: राइट,
0: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
1: ठीक है,
0: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
1: ओके
0: ठीक है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं, लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
1: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो पब्लिक की हित की बात,
0: पब्लिक की बात होनी चाहिए।
1: करेक्ट,
0: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
1: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
0: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
1: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
0: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
1: पब्लिक के लिए ही,
0: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
1: राइट,
0: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
1: बेसिकली मॉडल का पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें
0: चल रही है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
1: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बेसिकली
0: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
1: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
0: हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम
1: PIL उठाना,
0: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पर कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
0: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में, सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह, पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
1: ठीक है,
0: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है, कोई सेल्फ है, तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर, अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
0: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता,
1: ठीक है, ठीक है,
0: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है, तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
0: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेंस्ट आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हों, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हों, तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये वहाँ
0: पर्यावरण संरक्षा सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
1: करेक्ट, अरावली। हाँ,
0: तो अरावली हिल्स, अरावली yes. हिल्स क्या था, अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
1: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
0: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
0: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म।
1: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
0: लिटिगेशन,
1: लिटिगेशन यार पब्लिक सीखने को मिली है।
0: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
1: जी जी सर,
0: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
1: ओके
0: ठीक है।
1: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
2: देना, गूगल करके निकाल लेंगे। तो
1: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
2: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
0: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
1: okay.
2: है।
1: अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीआईएल कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
0: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो पीआईएल का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली 100%
0: इंटरनेट तक

0: जैसे मुद्दों पर पीआईएल नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी पीआईएल के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और पीआईएल भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज़ भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई पीआईएल जो है दाखिल करी थी, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक सबों से रिलेटेड बात हो रही है।
1: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में पीआईएल से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए, हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक पीआईएल आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता।
1: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
0: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
1: करेक्ट करेक्ट, वही ना,
0: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
1: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई फिर ना।
0: हाँ,
1: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
0: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ पीआईएल डेफिनेटली
1: याचिका
0: रहती है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
0: देखिए, हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओज हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ एडवोकेट्स है, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसके लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ, एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट, तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में, एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे, एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है,
1: जी जी,
0: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला, और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
0: अच्छा,
1: के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैं
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग,
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे में पता भी
1: नहीं। मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा, आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी।
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: नहीं वो हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता। फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412221111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही
1: कहा। तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर। और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर। तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है आप उस चीज को नहीं मान रहे हो, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट्स का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है तो, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है, बिल्कुल
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पे कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडिमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है, फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रेट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये इस सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाईकोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पर बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
0: या नहीं है।
1: हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
0: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
1: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है। हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
1: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानत उपाधि मिली हुई
2: है। वैसे
1: एक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
0: एलएलएम तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
1: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का टीम था, मुझे

0: तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊ मैं इसको।
1: बिल्कुल, क्या बात,
0: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
1: बिल्कुल,
0: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
1: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारे गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
0: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
1: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
0: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
0: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
0: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
1: बिल्कुल,
0: तो बस यही लाइफ है
1: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
0: किताबें ही आपकी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2 दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या?
0: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप
1: सबसे पहले तो घबराएं नहीं, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
2: सारनाथ का किया भ्रमण, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
3: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
2: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
5: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
6: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
2: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की, साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
7: ब्रिक्स मीटिंग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
2: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
8: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
2: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
9: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
10: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
11: कॉल 8826213131
12: स्किन बाल नाखून समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट कांट रोड मुरादाबाद
13: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
1: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजीरीना।
1: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
0: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
1: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है मैम।
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया है।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं, जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोगों ने पाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम एक इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं, क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान है, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको पसंद आएगा हमारा
2: जी।
4: ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
4: है। फैमिली ज्यादा आती
3: है जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: माननीय
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया, एक जनपद एक व्यंजन।
3: हाँ, एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
1: और दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों, रसोइयों, छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
5: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
1: स्वयं सहायता समूह महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
5: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
1: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
5: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों, दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
5: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
1: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
5: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
1: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर, सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
5: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
1: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
5: दोस्तों, आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं,
1: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
5: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
1: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
5: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
1: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
5: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
1: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
5: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: मुख्य समाचार। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है।
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
2: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सम्मेलन देश की युवाओं की आकांक्षाओं, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि युवा कड़ी मेहनत, इनोवेशन और समर्पण के जरिए देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
4: आज का ये प्रोग्राम शानदार है और ये कह रहा है कि देश का युवा देश की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ये भारत को आगे बढ़ाने की, नई ऊंचाइयों को छूने की ये जिम्मेदारी आज हमारा युवा ले रहा है। भारत का युवा मेहनती भी है, विजनरी भी है, क्रिएटिव भी है और साहसी भी है। देश के हर मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में देश के साथ खड़ा है।
2: कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के सदस्य मैथिली ठाकुर, उद्यमी अमन गुप्ता, अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ साथ कई कंटेंट क्रिएटर्स और खिलाड़ी उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी विधानसभा से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपने विधानसभा के सेक्टर 18 और सेक्टर 9 में पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। श्री गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया

0: के स्कैम के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। श्री गुप्ता ने विनोबा कुंज कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री बिरसा मुंडा का भारत के इतिहास में एक विशिष्ट और प्रेरणादायी स्थान है। श्री गुप्ता ने कहा कि धरती आबा के रूप में पूजनीय बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरण के प्रतीक थे। उन्होंने यह बात आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी भगवान श्री बिरसा मुंडा जनजातीय भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और संग्रहालयों में उनके प्रतिनिधित्व के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। एक रिपोर्ट।
1: अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन केवल औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक संस्थाओं और स्वदेशी जीवन पद्धति की रक्षा का एक सशक्त प्रयास भी था। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जनजाति समुदाय आर्थिक शोषण, सामाजिक विघटन और परंपराओं के शरण का सामना कर रहे थे, बिरसा मुंडा ने उनमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का नया संचार किया। जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने, जनजाति गौरव दिवस मनाने और जनजातीय धरोहर के दस्तावेज करण के प्रयासों का स्वागत करते हुए श्री गुप्ता ने इन्हें भारत के इतिहास की अधिक समावेशी समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संग्रहालयों की भूमिका पर बल देते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि संग्रहालय जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, वे यह निर्धारित करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां अपने राष्ट्र, अपने इतिहास और स्वयं को किस प्रकार समझेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संग्रहालयों में जनजाति समुदायों के अनुभवों, आकांक्षाओं, ज्ञान परंपराओं, सृजनात्मकता और राष्ट्रीय जीवन में योगदान को भी सार्थक रूप से प्रतिबिंब करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं की रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार बताया तथा युवाओं के लिए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। इससे पहले श्री संधू ने मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यवसायियों से बातचीत की। दिल्ली के मंत्री और राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज रघुवीर नगर क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से बातचीत की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लोगों से विभिन्न मुद्दों तथा उनकी समस्याओं पर बात की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्री सिरसा से सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई, पानी की लाइनों और सीवेज से जुड़े समस्याओं की जानकारी दी। वहीं श्री सिरसा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी न किए जाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां आयोजित चिकित्सकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर दिन रात समर्पण और सेवा भाव के साथ लोगों की देखभाल करते हैं, साथ ही उनका योगदान केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज ने आज नरेला बवाना रोड स्थित दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्थापित NAB व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। श्री इंद्राज ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दृष्टि बाधित जनों के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा जीवन की सुख सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कौशल विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री इंद्राज ने कहा कि दिव्यांगजन कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार कल प्रकाश विहार शाहबाद एक्सटेंशन में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और नालियों के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने कहा कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वामी दयानंद अस्पताल में नवनिर्मित उन्नत ऑपरेशन थिएटर ब्लॉक का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: श्री प्रवेश वाही ने अस्पताल में लगभग 1,70,00,000 रुपए की लागत से स्थापित दो अत्याधुनिक 4K लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिस्टम और आर्थोपेडिक तथा 35,00,000 रुपए की लागत वाली ट्रॉमा सर्जरी के लिए आवश्यक सी आर्म मशीन का भी लोकार्पण किया। इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से अस्पताल में मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सुरक्षित और सटीक सर्जिकल सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर महापौर श्री वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध होगा और अस्पताल की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के उपलक्ष्य में गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों ने लैंडफिल साइट पर चल रहे बायो माइनिंग, कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय सुधार तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें साइट पर संचालित गतिविधियों, कचरा प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भविष्य के कार्य योजना की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइयों को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक नए शिशु सदन केंद्र का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल अधिक समावेशी और काम के लिए जन केंद्रित माहौल को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 600 वर्ग मीटर में यह केंद्र बच्चों को एक अनुकूल, सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करेगा। यहां बच्चों को सीखने, खेलने, आराम करने के साथ साथ उनके विकास की भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में प्रज्ञाना नंदा ने वीसेंट कीमर को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वह इस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस जीत पर उन्हें बधाई दी। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश का युवा विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। केंद्र सरकार ने कानून माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पिंक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप का शुभारंभ किया। और भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई दी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
10: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
11: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
10: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
12: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफकोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट आप, रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई, आपके घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शहराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं। स्टेशन ऑफ द नेशन पे, ये है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, और भैया देखो, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं। वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहां बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
13: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई अच्छी रही।
12: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ये पहली मुलाकात है। वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टेशन में आप आए हैं तो आपका खुली बाहों के साथ वेलकम करता है आपका प्यारा सा दोस्त आनंद। तो भाई पहले अपने बारे में बताओ यार, अपना नाम वाम बताओ मेरी जनता को जरा।
13: मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मैं उत्तर प्रदेश के छोटे जिले अमरोहा ग्राम इकोंदा से रहने वाला हूँ, जोया के पास पड़ता है।
12: अच्छा, मुरादाबाद की जनता जानती होगी शायद, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं मुरादाबाद से नहीं हूँ, बट अब तो मुरादाबाद बहुत अच्छे से मुझे भी जान गया और मैं भी जान गया हूँ मुरादाबाद को। तो अजीम ये बताओ कैसा लग रहा है ऑफिस में, आप आए हो पहली बार, आप रेडियो पे आए हो?
13: या
12: पहले, उससे पहले कभी नहीं आए हो?
13: नहीं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे आपसे, खासकर बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, लहजा।
12: भाई आपका लहजा और आपका कम्युनिकेशन भी अभी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर। मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है लड़का यहाँ पर। अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार।
13: अन भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम।
12: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार, ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। क्या किया है, क्या किया?
13: बीएससी कंप्लीट,
12: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे का क्या चल रहा है?
13: अब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का।
12: क्या बात है।

0: बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहाँ जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया। शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए, क्यों भाई?
1: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
0: हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आए, राइट? इसी वजह से। बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है, जरा बताओ।
1: आनंद भाई, मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं।
0: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा। यार गाना बहुत अच्छा है, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी तुम्हें देखा तो शायरी आ गई। हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार। फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है, तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजे आनंद के साथ ये जो कन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चलो फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: इसमें कहना चाहूंगा, सबको किसी न किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी न किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार,
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। आप ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे, आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे? तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। ना चला पाया मैं जोर उस पर, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो उसकी याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना, कुछ होना हो उसकी यादें जरूर हमारे साथ होती हैं। आप सब कुछ बुला सकते हो, लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना, लोग कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं बदलती,
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगी तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी, मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शेरो शायरी बढ़िया कुछ कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो। आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार, तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे छेड़ दे भाई।
1: बताता हूँ ना, बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं, बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल।
1: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया।
1: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
0: क्या हुआ,
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना, तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना, तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
0: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी, एक दूसरे के लिए हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में, आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हुई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो?
1: हाँ है,
0: कुछ
1: कह
0: कुछ
1: सकते
0: है,
1: हैं
0: कुछ कुछ है,
1: कह सकते
0: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
1: हाँ, हर किसी को नहीं टकराते,
0: है ना, मजे की बात ये भी है।
1: हाँ।
0: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
1: बहुत ज्यादा।
0: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
1: बनाना चाहता
0: है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते,
0: है ना।
1: अब जस्ट इमेजिन हर कोई, मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई, जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त,
0: मतलब तुम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
1: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
0: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी के बस की बात नहीं है बॉस।
1: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
0: बहुत मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
1: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी,
0: हाँ,
1: कोई ना कोई तो,
0: हाँ,
1: अब आपकी उसमें कहते हैं ना, मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उस पे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
0: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
0: हाँ भाई, हाँ भाई,
1: हंसते लोग बहुत देखे, ना देखी उस जैसी हंसी,
0: क्या बात है,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखी, उस जैसी हंसी खूबसूरत तो वो बहुत है पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका।
0: वाह,
1: वो आंखें वो लब वो उसके कान का झुमका है बहुत हंसी पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच।
0: क्या
1: so
0: बात
1: much.
0: है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है।
1: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन में ये सी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके
0: भाई, मत कर यार मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन है आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इसके एरिया का, अमरोहा तुम्हारा मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था, एक गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है? सुनो साहब की आवाज है, बहुत प्यारा गाना है, उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुंदरी आनंद को

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आई हो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है। विलन्स?
0: अयो मां, मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई। So, यार देखो ये थी जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी एंजॉय कर रहे हैं, तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे? लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा यार अजीम, आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है, मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था, आजकल क्या होता है ना प्यार बाद में, पहले लोग देखना पसंद करते हैं, पहले पिक्चर भेजो मैं देखना चाहता हूँ, पहले दिखते कैसे हो एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना, और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, और जो ये तड़प है ना जो बेकरारी है वही इश्क है ना, और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव इट्स अट्रैक्शन है ना, तो एक वो हो गया। लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना, तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
1: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें।
0: हाँ,
1: जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं,
0: हाँ भाई,
1: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
0: करेक्ट,
1: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाते हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
0: क्या बात है यार, वंडरफुल यार, हर बार पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया है यार, आजकल
1: तो
0: प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही नहीं है, वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
1: सही बात
0: है ना, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
1: ये है, देखो डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
0: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
1: मोहब्बत नहीं है तो वो,
0: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
1: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने
0: वाले, गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने
1: इस पे, तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
0: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
0: करेक्ट यार,
1: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा,
0: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनके कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार, जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं। नया नया जब प्यार होता है, एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
1: तब तो मोहब्बत होती है। लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
0: हाँ, तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
1: तो तारीफ है उसके बालों की।
0: अरे वाह,
1: अब जैसे लड़की की बाल है, आपको आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना, भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
0: क्या बात है,
1: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है, उसके भीगे भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार, लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद
0: उसके भीगे,
1: है
0: वो उसके भीगे बाल है। जी हाँ, क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे, समझ गया।
1: अम्मी से नहीं कहना।
0: अरे नहीं नहीं, इट्स अ जोक से पारे। एनीवे, ये तुमने खुद ने लिखा है?
1: हाँ, मैंने खुद ने लिखा।
0: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो। तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे भीगे बाल
1: है, कोई बहुत पसंद है, लेकिन अब वो किसी और की पसंद है, मैं कैसे बता सकता हूं
0: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है। ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
1: मोहब्बत ही वही जो
0: बहुत, वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इस पे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें?
1: हाँ।
0: कोई इंसान है जिसका प्यार उसे नहीं मिला है, बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं, यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे, तो प्यार है।
1: अच्छा, मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायरी। हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
0: हाँ यार,
1: दूसरी की हो गई वो,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है, जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है।
0: करेक्ट।
1: तो उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस, ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी। इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हैं मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है। तब मैंने उस पर लिखा था, वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल। यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग, और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम, आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज। और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना, इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
1: क्यों नहीं,
0: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहे हो?
1: भीगे भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
0: बट वो मुझे याद नहीं आ रहा है।
1: नहीं यार,
0: यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
1: है
0: ना।
1: लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है, लेकिन वो
0: दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं, और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजे भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे आनंद भाई,
1: आरजे भाई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा, आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी
1: तो मैंने ये नाम रखा है यार। नहीं, अगर तुम भी आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका।
1: चलिए,
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं।
1: हाँ।
0: उस पर मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती
1: है
0: क्यों? अरे पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, और चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूं? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूं तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या
0: so
1: बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: वो ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा, थैंक्स फॉर यू। नो, आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना। अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों की। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक शब्द तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हद ही थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हद ही थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हद नहीं।
1: क्या बात है। थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेर व शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट? और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे का ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत की और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें, हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131
3: सिरदर्द लकवा या रीढ़ की तकलीफ क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो
4: हाँ छोटी आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं खूब सारी मस्ती खाना पीना रेस्टोरेंट होटल और बहुत कुछ
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम रामपुर रोड मुरादाबाद
7: क्या आप सर दर्द कमर दर्द या गर्दन दर्द से
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पीलिया हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
9: रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है
10: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है यानी कि देश युवा देश है ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है
9: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है
11: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है
9: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि

दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with economic.
8: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
9: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
10: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
11: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
10: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
12: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
13: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
12: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
13: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
14: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हो भाई?
1: बढ़िया, एक नंबर।
0: क्या बात है, एक नंबर तो आप हो ही, नो डाउट यार। और अजीम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता है, एंड आई एम श्योर आज की शाम भी कुछ खूबसूरत चीजें लेकर आए होगा हमारे दोस्तों के लिए। तो अजीम, ये बताओ रेडियो पे आके कैसे लग रहे हैं अब जब आए हो?
1: मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
0: क्या बात है, बहुत
1: दोबारा भी डर ही रहा हूँ, लेकिन बढ़िया, मजा आ रहा है।
0: वेरी नाइस यार, लेकिन डरना मत भाई। देखो, जो मेरे साथ बैठते हैं उन्हें डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देता हूँ। हाँ। पता नहीं चलता है कि कब हमने इंटरव्यू करके एंड भी कर दिया,
1: ये तो
0: है ना। एंड आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा
1: बहुत ज्यादा।
0: तो यार, आज की शाम जो है हम कुछ बेहतरीन से सुनना चाहेंगे अपने दोस्तों के नाम, अपने लिसनर्स के नाम। आप क्या सुनाना चाहोगे?
1: स्टार्टिंग में तारीफ की करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले वीक जो सुनाया था वो सूर्य स्टार्टिंग की सैडनेस।
0: मुझे लगता है यार, तारीफ अगर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। हाँ, चार चांद बन जाए। हाँ, है ना, चार चांद तो लग जाएंगे।
1: करो ना अपने महबूब की किस तरीके से। हाँ,
0: क्या बात है, महबूब की तारीफ, वाह।
1: पता है मुझे, पहले कुछ था पर अब अहमक हूँ मैं,
0: वाह।
1: पर तू नहीं, तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो? तुम मेरे लिए क्या हो सुनना चाहती हो तो सुनो। तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम, तुम खूबरू हो, खुश अंदाम हो तुम, सिफाते हुस्न से बहरावार हो तुम।
0: क्या बात है, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। गाइस, ऐसी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन अभी इसके साथ करनी है, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए आरजे आनंद के साथ। एक से गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं मोहम्मद अजीम के साथ। अजीम, वेलकम बैक है वंस अगेन FM मुरादाबाद के स्टूडियो में मेरे भाई। अब बताओ, अब क्या सुना रहे हो? अभी तो तुमने तारीफ कर दी, बहुत मजा आया तुम्हारी तारीफ सुन के, मुझे भी और मेरे लिसनर्स को भी, आई एम श्योर उनको भी अच्छा ही लगा होगा। तो अब जरा कुछ बेहतरीन सुना दो यार।
1: हाँ, क्यों नहीं, उसके बाद आप एक पोएट्री है, अपनी महफिल में उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी महफिल में उसके अफसाने बयां करना चाहते हैं, तो उस पे लिखी थी, मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर।
0: वाह।
1: मुसलसल चलता रहेगा ये कादिम सफर, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, मुख्तलिफ रहेंगे हम तुमसे, और एतबार करना, और एतबार करना, हमारी महफिल में तुम्हारे ही अफसाने बयां होंगे।
0: उर्दू इतनी गजब की है तुम्हारी, इतनी धाकड़ आपने बोला है, मतलब मजा आ गया, बेहतरीन। कोई हिंदी वाली भी सुना दे यार।
1: हाँ हाँ, बहुत हैं।
0: हाँ, तो कुछ बढ़िया से सुना दे। आज अजीम जो है अपनी डायरियों के पन्नों की आवाज आपको सुना रहा है, तो छका छक पलट रहा है वो, और उसमें से कुछ बेहतरीन ताजा ताजा फ्रेश कॉन्टेंट आपको दे रहा है। हाँ अजीम,
1: एक शायरी है, अब मोहब्बत से कह रहे हैं कि दगा उसने की थी, तो उस पर लिखी थी, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं।
0: वाह।
1: मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
0: याद करो,
1: दगा करते हम भी तुम्हारी तरह तो क्या कह पाते, तभी हम शायर हैं। मोहब्बत तुम भी करो किसी से और वो करे किसी और से, बैठो तुम भी किसी महफिल में हमारी तरह और सुनाओ अपनी शायरी और कहो, दगा उसने की थी तभी हम शायर हैं। मोहब्बत सच्ची हमने की थी तभी हम शायर हैं।
0: क्या बात है यार, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा असीम, एक बात बताओ, ये जो शेर व शायरी है ये कहाँ से निकलती है? कुछ लोग कहते हैं गजलों से शायरी बनी है, कुछ लोग कहते हैं टूटे दिल से शायरी बनी है, तुम्हारा क्या मानना है?
1: शायरी अपने आप आती है।
0: अच्छा, गजलों से भी मैंने सुना है कुछ। हाँ, निकलती है
1: ये, जितने भी जैसे आपने उन्हें सुना होगा, नुसरत फतेह अली खान,
0: नुसरत साहब को, उनके गानों में
1: उनकी कुछ नहीं होता, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, मैं माफी चाहता हूँ।

0: कुछ बोल रहा हूँ गलत, तो वो भी एक पोएट से ही पोएट्री सारी लिखी जाती है, शायरी लिखी जाती है, वो भी उसे बस पढ़ते हैं।
1: ओके, बट उनका तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का,
0: वो भी पोएट की ही कुछ लिखा हुआ होता है जो वो पढ़ते हैं।
1: ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, जो नज्म होती है उसमें और शेरो शायरी में कितना डिफरेंस होता है?
0: बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, कह सकते हैं थोड़ा बहुत।
1: ओके ओके ओके, तुम्हें कोई नज्म याद है?
0: नहीं फिलहाल तो मेरे को।
1: ओके ओके ओके, मतलब अभी तुम सिर्फ शायरो शायरी और पोएट्रीज में तुम ज्यादा रहते हो एक्टिव। कोई पोएट्री जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: हाँ है, ये उस पे है, जैसे कि मैंने लिखी थी, मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या। मुस्लिम हूँ फिर भी लोग पूछते हैं नशा शराब का करते हो क्या, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, न बीड़ी न सिगरेट न नशा शराब का है, मुझे नशा है तो बस उसकी आंख का है, नशा है तो बस उसकी आंख का है, और वैसे भी उसकी आंखें किसी शराब से कम थोड़ी है, हमें शराबी कहो मगर शराब का नहीं, उसकी आंख का कहो ना।
1: क्या बात है, क्या बात है अजीम, वेरी वेरी वंडरफुल यार, ऐसी अजीम की शेरो शायरी आप तक पहुंचती रहेंगी। एक काम करेंगे, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्दी से लौट कर आए। यार अजीम, बहुत अच्छी शेरो शायरी कर रहे हो, बहुत अच्छी पोइट्री कर रहे हो, लेकिन मेरे एक दिल की ख्वाहिश है उसपे कुछ सुना दो। तो जैसे आपको पता है ना, आजकल लोग बड़ी धोखेबाजी करते हैं, है ना, दिल लगी बहुत करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग, प्यार करते तो है लेकिन बाद में पता चलता है वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास था, है ना, अट्रैक्शन था। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सामने वाले ने आपसे दिल से मोहब्बत कर ली है लेकिन जब उसे पता चल रहा है कि नहीं ये तो टाइम पास था, ये तो उसके साथ में एक शातिर वाला गेम हो गया है ना, एक शतरंज वाली चाल हो गई, तो इसपे आप क्या कहना चाहोगे?
0: है एक शायरी उस पे है कि जैसे आपको टाइपिंग करते भी होता है ना, चैट पे धोखा देता होता है एक तरीके से, उसपे मैंने शायरी लिखी थी। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही हुआ क्या, मैं बताता हूँ तुझे बेचैन हूँ मैं। तू पूछ तो सही बेचैन क्यों हो, मैं बताता हूँ तुझे वजह तुम हो। तू पूछ तो सही मैं कैसे हूँ तुम्हारी बेचैनी की वजह, मैं बताता हूँ तुझे। तेरा बात ना करना खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे, खंजर से ज्यादा जख्म देता है मुझे।
1: क्या बात है, वेरी नाइस है, बहुत ही बढ़िया। अजीम तुम बहुत सारे ओपन माइक्स में जाते हो, बहुत सारे जो पोएट्री शोज होते हैं वहां जाते हो, तो कभी कोई ऐसा तुम्हारे साथ सीन हुआ है जो तुम्हारे दिल की बहुत अच्छी पोएट्री या शायरी रही और तुम वहां गए माइक पे तुम भूल गए हो, ऐसा हुआ है कभी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम एक बार हो चुका था।
1: हुआ था वैसे?
0: नोएडा शो में गया था।
1: अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हो वैसे वो ओपन माइक पे?
0: जहाँ जो बुला ले, आप खासकर ओपन माइक आपके पास आए हैं?
1: हाँ नहीं, मतलब तो आप मुरादाबाद में ओपन माइक्स में ढूंढते हो या आसपास के लोकेशंस में भी जाते हो? बरेली वगैरह?
0: हाँ, जा सकता हूँ मैं।
1: अच्छा, हाँ। मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ आदमी पहुंचे जाते हैं,
0: पहुंचे जाते हैं,
1: मेन बात तो ये है। तो फैमिली वगैरह का क्या सपोर्ट रहता है, उनको पता है कि तुम्हारा ये अंदर से एक वाइब है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारा पैशन है?
0: हाँ पता है उन्हें, फर्स्ट शो में तो मैंने भाई से ही पैसे लिए थे जाने के खर्चे के लिए, बट इतना वो नहीं है कि उन्हें लगता है कि पैसा ही आए तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, मुझे 3 साल से कर रहा हूँ मैं भी, बट मुझे बीएससी भी करनी थी साथ साथ, क्योंकि उसमें बैक आती, उस चीज से कर रहा हूँ बस, ये भी एक पैशन है, कर रहा हूँ।
1: वेरी नाइस। तो अच्छा, इसमें फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हो आगे?
0: हाँ सोच तो रहा हूँ कि इसमें निकल जाऊँ तो ज्यादा।
1: क्या स्कोप है वैसे यार?
0: हाँ
1: क्या स्कोप है इसमें, फ्यूचर क्या रहता है
0: इसमें? एक तरीके से देखा जाए तो आदमी कामयाब मरने के बाद ही है, क्योंकि शायर की शायरी मरने के बाद ज्यादा फेमस होती है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, लेकिन ये चीज हम चाहेंगे कि तुम जो कामयाबी है ना वो ऐसी हासिल करो जैसे अखिल भैया ने एंट्री मार के करी है अभी, इसीलिए तो उनको हवा हवाई कहते हैं हम। वे आगे बढ़ेंगे, वो बीच में कभी भी आ जाते हैं, और जब जो बिन बुलाए नहीं आते हैं, जिनको रिस्पेक्ट के इज्जत के साथ बुलाए जाते हैं वो हवा हवाएं होते हैं, और अभी आए हैं तो एक दो शायरी इनसे भी सुनेंगे, मगर इनको थोड़ा वक्त देंगे, अभी लैपटॉप निकालेंगे और अपने दिल के जज्बात उस पर सर्च करेंगे, फिर आपके सामने उनको पेश करेंगे। लेकिन हेलो भाई तो सुन लेते हैं। हाय अखिल भाई, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, कैसे हो आनंद?
1: बिल्कुल बढ़िया। आपने जो ये धक्का मार के गेट खोला है ना, इसकी बेइज्जती हुई आज, एक बार नोक नोक तो कर ही लेते यार।
2: आजकल ना बिना धक्का मारे कोई काम नहीं होते, ये सच्चाई है।
1: जो कपिल शर्मा बोलते हैं ना, 3 बार ताली ठोके, वही वाला मैंने इनके लिए कर दिया है। खैर अखिल भाई, ये अजीम जी हैं और ये अमरोहा से बिलोंग करते हैं, और इनके आसपास में कोई एरिया पड़ता है जहाँ से ये है पर्टिकुलर?
2: जोया।
1: हाँ, जोया के आसपास में ही है शायद, एक और उसके आगे भी कुछ है इनका एरिया, और ये बहुत अच्छा पोएट्री वगैरह करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया लिखते हैं और बहुत अच्छा सुनाते भी हैं।
2: कब से आपको पोएट्री का शौक है?
0: ये तो मैं बहुत टाइम से लिख रहा हूँ,
1: मैं वही इससे पूछ रहा था अभी,
0: अभी हाँ पर्टिकुलर टाइम से लिखना चालू, बहुत टाइम से लिखना चालू करता, पढ़ता था, चीजों को देखता था, अपने आप आती थी, बट लिखना जो स्टार्ट करा वो लाइब्रेरी जाने वक्त से लिख रहा, मतलब लगभग 3 साल हो गए लिखना, तब से स्टार्ट करा, जब दोस्तों को सुनाई चीजें, उन्होंने अच्छा कहा कि हाँ सही लिख रहा है तू जा, तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, लिखना चाहिए, और तो मैंने और अच्छी चीजें लिखी, टाइम दिया इसे भी थोड़ा, तो मुझे पसंद आया।
1: अच्छा, आप अखिल भाई के सामने क्या सुनाना चाहोगे, कोई बढ़िया सी अपने दिल की, जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, कोई शायरी या पोएट्री?
0: हाँ है ना, किसी की तस्वीर होती है ना कि उसकी तस्वीर, तो उस पे शायरी लिखी थी। कुछ बीते लम्हे कुछ बीते बातें याद करता हूँ, कुछ बीते लम्हे कुछ बीती बातें याद करता हूँ। तुमने तो कर ली किसी और से शादी, तुमने तो कर ली किसी और से शादी, पर मैं आज भी तेरी तस्वीर तकता हूँ और घुट घुट के मरता हूँ। और हाँ, कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, और हाँ कहने को तो तेरी तस्वीर फोन में है, मैं उसे आज भी अपने दिल में रखता हूँ।
1: वेरी नाइस सर। अखिल भाई क्या कहना चाहोगे आप, ये बताइए।
2: मैं अपने पर्स में एक तस्वीर ढूंढ रहा था।
1: हाँ, वो तस्वीर मेरे पर्स में गलती से आ गई, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा, आप चिंता ना करें। तो अभी अखिल भाई आप भी कुछ सुनाओगे ऐसी अच्छी सी चटपटी शायरी?
2: क्या क्या चाहते हो आप, मेरे से कुछ सुनना चाहते हो?
1: हाँ हाँ, बस ऐसा सुनना चाहते हैं जिसमें थोड़ी सी हंसी आ जाए आपसे, मुझे यही एक्सपेक्ट है। मतलब अच्छी बात है, एक माहौल बना हुआ है, मतलब पूरा शायराना माहौल बन रहा है, और अजीम बहुत अच्छी अच्छी शेरो शायरी करता है, इतना बढ़िया लिखता है, इसकी राइटिंग देखो, मुझे लगता है इसे तो बॉलीवुड में चले जाना चाहिए। हमारे गौरव से नहीं बोला अभी इसको ये बात?
2: नहीं नहीं, बॉलीवुड में जाएंगे, जरूर जाएंगे, और मुरादाबाद का नाम भी जो है हमारा एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर चमकेगा। और कमाल की बात ये है कि आप जहाँ से, ये अमरोहा से हैं, तो कमल अमरोही,
1: अरे वाह क्या बात है,
2: तो उनके उन्होंने वहाँ पे एक स्टूडियो बनाया था, तो बहुत ही, आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा।
1: तो ऐसे बहुत सारे जाने माने नाम हैं जो अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और हम मुरादाबाद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो बात अलग है। और हमें ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, क्योंकि मुझे लगा कि अपने शहर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है,
2: क्यों नहीं
1: ऐसा हो कि मुंबई की सेलिब्रिटीज को मुरादाबाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए,
2: क्यों नहीं, आपने तो बुलाया भी है, आपने तो इंस्टाग्राम पे करा भी है,
1: ये पॉसिबल हो सकता है अगर आपके इरादे मजबूत हो तो, क्यों,
2: बिल्कुल सही।
1: खैर, हमारा जो सेशन है वो इरादों और पॉजिटिविटी से भरा नहीं, आज दिल की शेरो शायरी से भरा हुआ है, तो कुछ कहना चाहोगे?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी मैंने आपकी सुनी तो उसमें आप कह रहे थे कुछ फनी सा हो जाए, तो उस पे सुना दूं?
1: अरे बिल्कुल यार, बस इतना फनी हो कि हम लोगों को हंसी आए, बाहर वालों को ना आए। खैर,
0: उस पे तो रखा था मैंने भी फूल अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लोकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, रखा था फूल मैंने भी अपनी किताब में तुम्हारे नाम का, पहना था लोकेट अपने गले में तुम्हारे नाम का, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, अपनी महफिल में पौवा बटवा दूंगा मैं तुम्हारे नाम का।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं फिलहाल पानी बंटवाना चाहता हूँ, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं और एक गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस हैं। वेलकम बैक, वंस अगेन अखिल जी हैं साथ में, मोहम्मद अजीम हमारे साथ ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और मैं हूँ आपके साथ आरजे आनंद। पिछली बार जब अजीम आए थे तो उसने बहुत अच्छी अच्छी आपको पोएट्री सुनाई, कहानियां, कहानी तो नहीं सुनाता ये, आई थिंक इसका जोनर है, यानी आई डोंट नो है भाई तेरा जोनर, हाँ ये पोएट्रीज करता है, बहुत ही बढ़िया। तो अब जो है यार, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अभी हम बात कर रहे थे फनी वाली, अब थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं, जिनके दिल टूट जाते हैं उनके बारे में बात करना जरूरी है, उस पर क्या कहना चाहोगे, टूटे आशिकों के लिए कहना चाहोगे? अखिल जैसे लोग बिल्कुल टूटे आशिक नहीं होते, ना ही मैं हूँ, तो आप हम दोनों को छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं।
0: हाँ एक है, लेकिन टूटे आशिक नहीं, लेकिन अपनी मोहब्बत को आप सबसे नायाब बताना चाहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: आपकी मोहब्बत सबसे नायाब है, उस पर लिखी थी मैंने, किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी ने पूछा वही क्यों हमारे दिल से बस एक बात निकली, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, किसी की जिंदगी तो किसी का ख्वाब है वो, यूं तो लाख हसी हैं जहां में यारो, यूं तो लाख हसी हैं जहां में यारो, पर वो सबसे हसी और सबसे नायाब है वो, सबसे नायाब है वो।
1: क्या बात है, अखिल जी ने अपना जो है पिटारा तैयार कर लिया है कुछ सुनाने का, तो इनके पिटारे को ध्यान में रखते हुए माइक में इनकी और जो है लगाना चाहूंगा।
2: मैं अपने सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा,
1: श्रोता मेरे भी हैं,
2: कि जो भी मेरी आवाज निकल रही है दिल से, जो भी शायरी निकल रही है
1: जी जी,
2: वो सब आनंद की दिल की भी है, जो आनंद अपने से कहना चाह रहा था, कहना चाह रहा है
1: कि मैंने लिख के इनको फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए, झूठे पड़ेंगे तो सर आपका होगा मेरा नहीं, मेन बात ये है।
2: अब आनंद जी भी जो है हर सीजन वेट करते हैं कि कब मेरा सीजन जो है होगा पूरा,
1: मतलब कहना क्या चाहते हो, सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट कपिल शर्मा शो, वो सीजन 5 सीजन 2 नहीं चल रहा है ये। हाँ फिलहाल यहाँ पर शेरो
2: शायरी, तुम्हारी मुस्कान का असर कुछ ऐसा होता है,
1: वाह,
2: दिल का हर कोना रोशन सा होता है,
1: गजब,
2: यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले, यू तो जी लेते हैं हम हर दिन अकेले पर तुम्हारा साथ जिंदगी से भी प्यारा होता है।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये
2: इंस्टेंट शायरी कहते हैं ना इसे,
1: इंस्टेंट शायरी ये होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर में 5 किलो आलू ना बांट दूं फ्री में गली के मोहल्ले में।
2: 5 किलो तुम 5 गिलास नहीं पिला पा रहे हो पानी लोगों को।
1: क्या बात कर रहे हो, मैं 5 बॉटल पानी पिला चुका हूँ। 5 गेस्ट आए थे सुबह से मेरे ऑफिस में, कोई था नहीं आज।
2: बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो गर्मी में आनंद, बहुत अच्छा।
1: थैंक यू सो मच। बस आपको नहीं पिलाया, अभी थोड़ी देर बाद आपको भी सर्विस देंगे पानी की, आप चिंता ना करें। वेल आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत अच्छी बात है, पानी लाते रहिए और पानी पीते रहिए। क्यों अखिल भैया, अब ये माइक जो है उस लड़की की तरफ भी करते हैं जो एक बड़ी देर से हमारी तरफ बैठी है और हम लोगों को घूर रही है। हमारे बीच में प्राची भी है, आज की जो शाम है महफिलों से सजी हुई है। प्राची क्या करते हो तुम, अपने बारे बताओ।
3: मैं पोइट्री करती हूँ कभी कभी, और मैं एक पोइट्री है, एक शायरी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी से सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। प्राची मजा आ गया तुम्हारी शायरी सुन के, और तुमने इसमें एक बात बोली थी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे
3: फिर
1: तो
3: भी
1: नहीं
3: खुद से सवाल हमारा।
1: क्या बात है, और
3: वी माइट बी रॉन्ग,
1: हाँ
3: पर स्टिल मतलब एक हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत हो, पर अभी तक जितने एक्सपीरियंस है बेस्ड ऑन दैट कि खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखी वो फिर भी नहीं हमारा।
1: नहीं, वो क्या लाइन बोली थी, दुनिया है देखी हमारी, स्टार्टिंग में कुछ बोला था
3: नहीं ना? एक बार मैं दोबारा से कहना चाहूंगी।
1: हाँ हाँ।
3: लगता है मुझे कि नहीं बस जिंदगी पे हमारा, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, इसमें दस्तकें तो खुदा की भी होती हैं, ऐसा कहता है अनुभव हमारा। वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, वैसे तो नहीं देखी हमने दुनिया सारी, पर फिर भी खुद से एक सवाल हमारा, क्यों किसी की एक ही खूबी काफी है दिल में समा जाने के लिए, और किसी की 1000 खूबी भी दिखे वो फिर भी नहीं हमारा।
1: क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और राजमा चावल है हम सभी का प्यारा, बहुत ही क्या इसे भी बहुत अच्छा बोला
2: आपने, पूरी शायरी को गुड़ गोबर कर
1: दिया। ये नहीं था यार, मेरा फेवरेट है तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्राची टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा बोला। और ये जो इन्होंने बीच में शब्दों का इस्तेमाल किया गुड़ और साथ में जो मिक्स किया है वो पता नहीं अच्छा क्यों पसंद आया, आई डोंट नो। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीम भाई तुम्हें कैसा लगा इस माहौल में आके, मजा आया? अब यार जाने का समय हो गया है और कुछ खाने पीने का भी समय हो रहा है गाइज, क्योंकि रात हो रही है तो डिनर भी करना है समय से। अखिल भाई तो बैठे रहेंगे आपके साथ, अभी आपकी फरमाइशी गाने भी बजाएंगे।
2: नहीं नहीं, मेरा आनंद तुम्हारे दिल से एक और आवाज निकलने वाली।
1: हाँ हाँ प्लीज, मैं अपने दिल को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, आप अपने दिल का बटन ऑन कीजिए, बोलिए सर।
2: इश्क वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
1: वाह जी वाह।
2: इश्क वो है जो दिल से निभाया जाए,
1: वेरी नाइस।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं,
1: हाँ।
2: अपना कहने को तो बहुत मिल जाते हैं, पर अपना वो है जो हर हाल में साथ निभाए।
1: क्या बात है, हम साथ निभाना साथियां निभाएंगे सर, टेंशन मतलब आज रात को 9 बजे मैं टीवी पे देखूंगा हम साथ निभाए। हम साथ साथ है, देखिए आपने?
2: हाँ देखिए।
1: हाँ तो बस वही है, हम साथ ही है यार।
2: तो एक आनंद एक बात भी पूछना चाह रहा था मैं ये पूछना चाह रहा था कि असल में एक शायर को कब लगता है कि वो शायर बन गया?
1: इससे जोक से बात, अखिल भाई आपने जो बोला ना एक शायर को कब लगता
2: है शायर, हाँ।
1: एक शायर बन गया है, मुझे
2: तो ये बात हम पूछना चाहेंगे अजीम साहब से पूछेंगे।
1: वैसे आपको आपको क्या लगता है, मैं ये आपका जो सवाल है वो आपके ऊपर ही मैं रिपीट मारता हूँ, आप बताओ मुझे।
2: मेरे हिसाब से पहले अजीम साहब से बात करते हैं, फिर मैं भी अपना विचार रखूंगा, अपना विचार रख दूंगा तो फिर
1: आइडिया मिल जाएगा ना मोहम्मद अजीम जब बोले। अजीम क्या लगता है भाई?
4: मुझे लगता है वो जब लिखना चालू कर दे, अपनी कलम उठा ले
1: और जो दिल से उसकी फीलिंग्स आए, जो दिल से
4: लगे कि 4 आदमी को सुनाने के बाद लग रहा है कि हाँ वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं तो वो शायर बन चुका
1: क्या
4: है
1: बात
4: बस उसे अपने आप।
1: और मुझे ऐसा लगता है अखिल भाई कि जब जब आपकी इमोशन आपकी बातों में आने लग जाए, आपकी कलम में वो एक्चुअल में फीलिंग आने लगे जो जो सामने वाले को रिलेटेबल फील करा दे, तो फिर आप शायर बन गए। क्योंकि आपकी शायरी से किसी को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बात बोली जा रही है, मतलब ये मेरा जिक्र हो रहा है, तो आप शायर बन गए। प्राची कुछ कहना चाह रही है, ये भी शायर बनेगी आज, मुझे पक्का यकीन है। हाँ प्राची।
3: नहीं, जैसे अभी आपने पूछा कि कब एक शायर को लगता है कि वो शायर बन गया है, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से, मुझे तो अपने साथ ऐसे ही लगा था, पता नहीं मैं शायर हूँ या नहीं।
1: नहीं तू नहीं है, बोलती रहे आगे।
3: ठीक है, जब हम मतलब जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसको हम फ्रेम कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमने देखा है हाँ उसको फ्रेम कर पा रहे हैं,
2: समझा पा रहे हैं,
3: उसको मतलब लिख पा रहे हैं, तो तब हमें लग जाता है कि हाँ कुछ हमने अच्छा लिखा है।
1: क्या बात है, मैं भी आज से लिखना शुरू करूंगा, शायद सबको लग जाए मैं अच्छा आरजी हूँ। माइक भैया की तरफ करो, आप जरा भैया से पूछते हैं। हाँ, आपका सवाल मुबारक हो आपको, अब बताओ आप।
2: मेरा जो थॉट है वो यही है कि जब आपके जो जहन में चल रहा है, जो आपके जो सपनों में चल रहा है, एक्चुअली क्या है शायरी में वो चीजें जो आप ना रियलाइज करते हैं, मतलब आपके पास होती नहीं है मगर आप उसे एक इमेजिन करते हैं।
1: Absolutely.
2: तो जब वो इमेजिनेशन आपके साथ आपकी कलम पे उतरना चालू हो जाए और वो उस तरीके से उतरे कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ ये तो मैंने भी इमेजिनेशन किया था, या ये ऐसा कुछ है कि इन्होंने हाँ जो मेरे साथ भी हुआ है, या फिर कहते हैं ना कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक है, ख्यालों में आती है आपकी मगर वो चीजें आपको भी पता है वो पूरी नहीं होती है। तो जब आपके हाथ में कलम है और आपने उन ख्यालों को अपने साथ उसमें लिखा है और जब दूसरों को दूसरों तक वो बात पहुंचाई है, तब जाके लगता है कहीं ना कहीं शायर ये बंदा
4: शायर है,
1: शायर है, इसीलिए तो कहते हैं बच्चा है तू मेरा, समझ रहा हूँ मैं। वो डायलॉग मेरे को अखिल भाई ने दिया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अखिल भाई, बहुत अच्छी बात है, और मुझे इस बात से यकीन हो गया कि शादी के बाद हर कोई शायर बन जाता है। मैं इस बात को मान सकता हूँ अजीम, एक घर का एक घर वाला शायर जो होता है, जैसे अखिल भाई एक घर के अच्छे शायर है, वो कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं हमेशा जब हमारे स्टेशन में आते हैं। तो आप बताओ, आपने तो मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, अब जाने का समय भी हो रहा है, तो जाते जाते अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे दोस्तों को, कोई अच्छी अपनी शायरी के माध्यम से कोई थॉट, कोई बात एक्सप्लेन करना चाह रहे हो आप?
4: मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी शायरी है नहीं, बट
1: नेक्स्ट टाइम आऊंगा। अपने फीलिंग्स कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, कोई थॉट कहना चाह रहे हो?
4: बहरहाल मुझे सच बस बताऊं तो मुझे अच्छा बहुत लगा यहाँ,
1: अच्छा मजा आया,
4: आनंद भाई से मिला, टीम से मिला, बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी शायरी आप लोगों को इतनी पसंद आए कि आप मुझे बार बार बुलाएं, रिक्वेस्ट करें आनंद भाई के कमेंट बॉक्स में बार बार मुझे बुलाएं।
2: पता है मैं श्रोताओं को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहाँ पे आप मिल सकते हैं आसानी से?
1: ये इंस्टाग्राम पे इसका अकाउंट है, मैं इनका एक अच्छा सा फोटो शेयर करता हूँ, बढ़िया सा अच्छे से करली वालों वाला, तो इनको लोग तुरंत लाइक करेंगे और फॉलो भी करेंगे। वेल अब लेंगे आपसे जाने की इजाजत, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है तो उसे आप FM मुरादाबाद पे डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं, और हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आप ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, गाइस बजाते रहिए
2: और गुनगुनाते
1: रहिए। बाय बाय।
5: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: टायर लो सोना जीतो।
8: क्या?
7: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, जल्दी कीजिए।
9: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
10: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

बिल्कुल सही कहा, सोना चांदी से महंगा है प्यार यारो। और ये जो गाना था फरमाइश थी लतीफ़ साहब की कश्मीर से, लतीफ़ रैना साहब की कश्मीर से फरमाइश थी। और इसे गाना गाया है इसको उदित नारायण साहब ने, और बहुत ही अच्छा गाना था। तो हमने कहा क्यों नहीं साहब, आपकी फरमाइश ही पूरी की जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 MHz पे, और मैं हूँ आपका दोस्त अखिल। आज का जो ये शो है, ये शो समर्पित है उस खास कलाकार को जिसने ना सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपनी असल ज़िंदगी में भी इंसानियत की मिसाल कायम की है। एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष देखा, सफलता देखी, प्यार भी देखा और समाज सेवा का रास्ता भी चुना। थोड़ा बहुत तो आप गैस कर ही सकते हैं कि वो हैं कौन। और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी कहते हैं ना, आपको थोड़ा थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ इनका राजनीति के साथ भी संबंध रहा। थोड़ा थोड़ा गैस, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान अभिनेता सुनील दत्त साहब की। आज के इस शो में, इस 1 घंटे के सफ़र में हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से, उनकी फिल्मों की यादें और कुछ खूबसूरत शायरियाँ भी। कुछ लोग किताबों में नहीं, लोगों के दिल में लिख जाते हैं। कुछ लोग किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिख जाते हैं। वक्त गुजर जाता है मगर उनके किस्से अमर हो जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं उनकी एक यादगार फिल्म के गीत के साथ, और थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं। अगर आपने, मुझे पता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई फिल्म ऐसी देखी है उनकी जो आप कह सकते हैं कि हाँ सुनील दत्त साहब आज भी मेरे जहन में है।

तो आपने कितना अच्छा गाना सुना अभी, ये हमराज मूवी का था और इतनी हसीन वादियों में ये शूट किया गया गाना, 60s का गाना, बी आर चोपड़ा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। और बहुत ही, कहते हैं ना एक तरीके से, वो मौसम और वो यादें इस गाने में ऐसी जुड़ी हुई हैं। इतना बढ़िया पिक्चराइजेशन किया है कि देखने को तो एक बार बनता ही है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील दत्त जी का बचपन बेहद ही संघर्षों से भरा हुआ था। आजकल की शायद पीढ़ी को, अगर हमारे साथ ही बैठी हो गाड़ी में या हमारे आसपास सुन रही हो, तो क्या क्या पता उन्हें पता भी ना हो कि सुनील दत्त साहब कौन हैं और कैसे एक्टर हैं। तो उनके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि अगर आप संजय दत्त को जानते हैं तो वो उनके पापा हैं। विभाजन के दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ कई कठिन परिस्थितियों को का सामना किया, लेकिन कहते हैं ना, मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, उसे मजबूत बनाती हैं। रेडियो सिलोन में बतौर आरजे काम करने वाले सुनील दत्त एक दिन खुद फिल्मी दुनिया के चमकते सितारे बन जाएंगे, ये सोचा नहीं था उन्होंने। उनकी मेहनत और उन्होंने उनकी सादगी ने उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाया। जो गिरकर संभल जाए वही इंसान होता है, जो हारकर भी मुस्कुराए वही महान होता है। ऐसी सोच के साथ सुनील दत्त साहब हमारी इंडस्ट्री में थे और बहुत ही बढ़िया, मतलब कहते हैं ना एक तरीके से, उनके ऐसे गाने हैं, अभी आपको मैं एक एक करके जो जो गाने हम सुनाते हैं आपको, उनको उन्हीं यादों में ले जाएंगे, जो लगेगा कि हाँ, अगर आपकी भी कोई ऐसी याद या आपकी भी ऐसी कोई बात सुनील दत्त साहब जी के साथ कुछ हो जो आपको उनकी याद आती है, तो ज़रूर हमें हमारे नंबर पे शेयर करें। हमारा नंबर है 9837896896।

0: तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे गाना तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है ये असर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। 1976 में नागिन मूवी का सॉन्ग था और बहुत ही अच्छा पिक्चराइज हुआ सुनील दत्त साहब और रेखा जी के साथ। तो मैं अभी हम बात कर रहे थे आज कि सुनील दत्त साहब के ऊपर कि क्या लीजेंडरी एक्टर वो हमारे साथ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। उनकी और नरगिस जी की कहानी सभी को पता है, सभी ने सुनी है। सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक थी ये नरगिस जी और सुनील दत्त साहब की कहानी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई थी और उस समय सुनील दत्त जी ने अपनी जान की परवाह बिना किए नरगिस जी को बचाया था और यहीं से उनकी एक प्रेम कहानी शुरू हुई जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने, कहते हैं ना, साथ निभाया एक तरीके से। तो एक प्रेम कहानी का कहते हैं पूरे के यहाँ कोई एंड नहीं, कोई दी एंड नहीं, पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने एक साथ रहे और एक साथ एक दूसरे का साथ दिया। प्यार जो है सिर्फ शब्द नहीं होता, प्यार वो एहसास है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहता है। हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं, मोहम्मद उस्मान साहब, संभल हयात नगर से। उन्हीं की कुछ याद में उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप उस्मान साहब? और जैसा आपको पता है कि आज हमने ये एक शो जो किया है सुनील दत्त साहब की मेमोरी के लिए है। आप ही कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कोई शायरी आप कहना चाह रहे थे, सुनाएंगे हमारे शो पर?
1: बिल्कुल, मैं थाना हयात नगर मोहल्ला अंसारी संभल से मैं बोल रहा हूँ, मोहम्मद उस्मान।
0: जी उस्मान साहब,
1: शायरी का ये है तरीका, हम क्या लिखूं तख्ते इश्क पर, कलम मेरे हाथ में दबा गए ऊपर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: ये सब शेरों का ये कटिंग है, बादशाह है ये शेर,
0: अच्छा,
1: इतने भी खेर आपसे लगते हैं सब बेकार हो गए इसके सामने।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। कोई गाना भी आप सुनना चाहेंगे शेर के बाद?
1: ये गाना सुनना दिलीप कुमार साहब के ऊपर।
0: पक्का पक्का साहब, अभी सुनाते हैं।
1: धन्यवाद साहब।
0: धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या शेर निकल के आया है उस्मान साहब के बाद से भी, एक हम भी सुना देते हैं इसी बहाने। मोहब्बत चेहरे नहीं दिल की सच्चाई देखती है, जो साथ निभाए उम्र भर वही असली मोहब्बत होती है। इसी के साथ एक और गाना जो फिल्माया गया है सुनील दत्त साहब और नरगिस जी के एक साथ,

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
3: प्रकृति से खुशियों की लहर।
4: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
5: सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जारी।
6: तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। जिस तरीके से आज बातें चल रही हैं सुनील दत्त साहब के ऊपर, तो उन्होंने एक सुपरस्टार का तो उनके पास तमगा था ही, क्या कद क्या काटी, और उस सुपरस्टार के तमगे से लेके समाज सेवा तक उन्होंने जो अपना परचम निभाया है, जो लहराया उन्होंने अपना परचम, उसकी भी एक अलग ही काबिल तारीफ थी। सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे सुनील दत्त साहब, वो एक बेहतरीन इंसान भी थे। उन्होंने शांति और एकता के लिए कई यात्राएं की, बाद में राजनीति में आए और जनता की सेवा की और उसी को अपना एक उद्देश्य बनाया। उनका मानना था अगर सफलता सिर्फ आपके लिए है तो उसका कोई मतलब नहीं, सफलता तब है जब उसे समाज का भला हो, उससे पूरे समाज का भला हो। और बहुत ही कहते थे कि उन्होंने अपने आसपास की जहाँ पे वो वहाँ पे जहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने खूब उन्होंने उस जगह को खूब अच्छे से उन्होंने सही मतलब कहते हैं कि अच्छे से देखा, वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को उनका निवारण करवाया। और बहुत ही अच्छी, एक तरीके से कहते हैं ना, जो राजनीति में सिर्फ चमक धमक एक अलग नहीं, उनकी कहते हैं समाज सेवा की मन से उन्होंने अपनी सारी चीज़ें निभाई। नाम कमाना आसान है, इज्जत कमाना मुश्किल, और जो दोनों कमा ले वो इतिहास बन जाता है। तो इसी के साथ एक और गाना उनसे कुछ जुड़ी हुई यादों से।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की थी विनीत जी ने और हमारे कुछ श्रोताओं के भी मैसेजेस आए हैं। ये जो गाना था, ये गाना लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी ने गाया था और इस मूवी का नाम था मिलन। बबीता जी कहती हैं, बबीता जी का मैसेज है कि बचपन में जब ये पापा सुनते थे तब हमें ये गाना बहुत बोरिंग लगता था और आज इस गाने के मतलब हमें समझ आ रहे हैं। तो बबीता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि बचपन में जब भी ऐसे गाने चलते थे और पापा सुनते थे रेडियो पे, तो हमें भी बड़ा लगता था कि पापा ये जो हैं कैसे गाने बजे, गोविंदा या फिर इस समय अमिताभ बच्चन या फिर आप अक्षय कुमार के कोई क्यों गाने क्यों नहीं आप प्ले कर रहे हो। तो पापा मुस्कुरा देते थे, तो हमने भी कुछ कहते नहीं थे, चलो ठीक है भाई पापा सुन रहे हैं गाना। तो ये बात हमारे साथ भी हुई है और बहुत अच्छी, मतलब सही कह रहे हैं आप कि बचपन में तो ये सब गाने बोरिंग ही थोड़े से लगते थे, मगर अब जाके लगता है कि हाँ इस गाने के बोल अब जाके समझ में आते हैं। सुंदर जी कहते हैं रामपुर से, सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये गाना अपनी फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं और अब तो शर्म और लिहाज ही नहीं रही। हाँ सुंदर जी, अब आप कह सकते हैं इस बात को कि हाँ इस गाने को हम फैमिली के साथ तो सुन ही सकते हैं। आजकल के आप थोड़े से हनी सिंह और इन सब को सुन सकते हैं, मगर फैमिली के साथ आप अवॉइड ही करते हैं इन सब के गाने। सौरभ जी कहते हैं, सौरभ जी ने कहा है कि मदन सर के स्कूल की फेयरवेल पार्टी में सुना था मैंने ये गाना और मेरी उस फेयरवेल पार्टी का ये गाना ही एक याद है। हाँ सौरभ जी, तो मैंने कहा ना आपसे कि किसी ना किसी तरीके से सुनील दस साहब जो हैं कैसे भी आपके से जुड़े हुए हैं, तो ये आपने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया। चलिए दोस्तों, तो बात चली हमारी सुनील दस साहब की, तो सुनील दस साहब के जो बेटे हैं संजय दत्त, उनसे उनका रिश्ता कैसा था वो तो सभी को पता है कि हर उनके उस वक्त में भी, बुरे वक्त में भी संजय दत्त साहब के सुनील दत्त साहब खड़े रहे। हर पिता अपने बच्चों के लिए एक ढाल बन के खड़ा रहता है, तो उसी तरह के सुनील दत्त साहब का ऐसा ही नेचर था। तो जब संजय दत्त जी की मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे तो तब सुनील दत्त साहब हर कदम पर उनके साथ खड़े थे, ये तो जग जाहिर है और सबको पता भी है। एक पिता का प्यार क्या होता है ये उनके जीवन से सीखा भी जा सकता है। बाप वो दरिया है, इस शायरी से मैं कुछ कहना चाहूँगा उनके लिए। बाप वो दरिया है जिसकी गहराई कभी नापी नहीं जा सकती, वो खुद तकलीफ सहकर भी औलाद को खुश रखता है और ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो सभी को भावुक भी कर देता है। और कहते हैं ना कि आज के समय में कहते हैं अरे तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानता नहीं है वो मैं हूँ, तू मैं जानता नहीं हूँ किसका। तो वो एक रिश्ता है ऐसा कि बाप बेटे का रिश्ता तो ऐसा ही होता है कि दोनों एक दूसरे को कह के हाँ भाई तू ये कर और तू वो कर, तो एक अलग ही रिश्ता कहलाता है बाप बेटे का रिश्ता। और बहुत ही अच्छा कहते हैं कि संजय दत्त साहब आज भी अगर कहते हैं कोई बात जिक्र आता है तो वो सुनील दत्त साहब को एकदम इमोशनलाइज हो जाते हैं उनकी बात सुन के या उनका नाम सुन के। तो एक ऐसा रिश्ता होता है यार दोस्तों। और आपका भी ऐसी कुछ कोई याद, कोई ऐसा मैसेज जो सुनील दत्त साहब से मेमोराइज करता हो तो ज़रूर आप हमें मैसेज करें, हम उसे यहाँ शो करेंगे, हम बताएंगे कि हाँ ऐसा है आपका कुछ रिश्ता उनके साथ। 9837896 9896 पर।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।